नमस्कार, सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां, संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का। कार्यक्रम है खेती की बातें।
3: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान कुछ सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं, जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से न चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें, सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौली से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें, उसमें घोल तैयार करने का तरीका लिखा होता है। सांद्रित कीटनाशक को खोलते समय विशेष सावधानी रखें कि वो आपके हाथ पर ना गिरे। स्प्रेयर टैंक को कभी न सूंघें। स्प्रेयर टैंक को भरते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक जमीन पर ना फैले। स्प्रेयर तैयार करते समय खाना पीना वर्जित होता है। उपकरण लीक करने वाला या कहीं से भी खराब उपकरण को छिड़काव करने के लिए प्रयोग में ना लें। नोजल सही होनी चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से फूंक कर साफ ना करें। इसके लिए स्प्रे से बंधे पुराने टूथब्रश का उपयोग करें और पानी से साफ करें। घास फूस नाशक और कीटनाशक को कभी भी एक स्प्रेयर से छिड़काव ना करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें। इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें।

0: और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में कीटनाशक न डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह न रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ न रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस कांड।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है नानक वाणी, आलेख एवं वाचन अनुपमा तिवारी का।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोर नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाई के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहां जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान है। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम करता पूरक

काल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक हो से भी सच सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल केवे सच यारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको तृप्ति शाक्य के गाए चंद भक्ति गीत सुनवा

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है डेंगू लक्षण एवं उपचार। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर गगनजोत कौर और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
1: जाता है हेल्थ इज वेल्थ। यदि आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है, लेकिन यदि शरीर में कुछ भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो फिर मन परेशान होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और हम बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लग जाते हैं। एक ऐसा ही बीमारी है जिसका नाम है डेंगू, जिसके सुनने से ही लोगों में घबराहट उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि डेंगू होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है कि समय रहते हम इसका उपचार करें और अपना बचाव हम किस प्रकार करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर गगनजोत कौर। मैडम, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: डेंगू होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है?
2: तो डेंगू इन्फेक्शन बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो के काटने से, यानी कि मच्छर के काटने से होती है। डेंगू एडीस मॉस्किटो के काटने से ही जो है फैलती है।
1: जिस किसी को डेंगू हो जाता है तो इसके लक्षण क्या है कि समय रहते हम उसका उपचार करें?
2: डेंगू के जो लक्षण रहते हैं, पहले तो ये कि बुखार, हाई ग्रेड फीवर या तेज़ बुखार का होना, और उसके साथ जो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है वो है बॉडी एक्स या बदन दर्द जो रहता है। इनफैक्ट डेंगू के पेशेंट्स में बॉडी एक्स इतनी सिवियर हो सकती हैं कि उसे ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को पेट में दर्द, उल्टी जैसा लगना, भूख कम लगना, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स को इसमें कफ या खांसी और कोल्ड जैसे सिम्टम्स भी परसिस्ट कर सकते हैं। अगर डेंगू ज़्यादा सिवियर हो तो उसमें कई बार ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मुंह से खून आना या यूरिन में खून आना या गट के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो मोशन जो है या पैखाना जो है काले रंग का होना।
1: ये गंभीर लक्षण है?
2: ये गंभीर लक्षण है। तो डेंगू बेसिकली दो तरह का होता है, क्लासिकल डेंगू जिसमें पेशेंट्स को फीवर है, बदन दर्द है, वॉमिटिंग्स वगैरह हैं, और ज़्यादातर डेंगू जो होता है मरीज वो क्लासिकल डेंगू के होते हैं और ये अपने आप से 7 दिन के अंदर अंदर यूजली रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ केसेस में सिवियर डेंगू होता है जैसे हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं, और जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो नाम में जैसा हेमरेज आ रहा है तो उसके चलते हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और इसका जो कारण है वो ये कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जब प्लेटलेट्स एक क्रिटिकल लेवल से फॉल करना शुरू करते हैं तो उसके चलते ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा कुछ पेशेंट्स में इसके चलते शॉक हो सकता है, शॉक यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षण हुए।
1: सामान्य बुखार में भी लोग इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लक्षण बहुत लोगों में दिखलाई नहीं पड़ते हैं लेकिन उन्हें बुखार आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है और सामान्य वो बुखार की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? यदि आपको बुखार आ रहा है तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और फिर अपना इलाज नजदीकी जो चिकित्सक हैं उनसे आप करवाइए।
2: तो आप सही कह रहे हैं कि डेंगू में जैसे सबसे पहला लक्षण हमें बुखार आना शुरू होता है, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं या टाइम से हॉस्पिटल में नहीं प्रेजेंट करते हैं। तो अगर तो ऐसा आपको मैनिफेस्टेशंस हैं, फीवर है जो परसिस्ट कर रहा है, 3-4 डेज हो गए हैं और आप
1: लंबे समय तक
2: आपका बुखार जो है वो बना हुआ है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आई एडवाइस कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और एक बार अपना ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि जैसा मैंने बोला सबसे पहले आपका CBC का जो एक बहुत कॉमन टेस्ट है हर लैब में हो जाता है, उसी में देखने में पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स जो है वो कैसे चल रहे हैं। अगर प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं और TLC काउंट जो होता है वो भी थोड़ा डेंगू में हम लोग देखते हैं ऑन द लोअर साइड चल रहा होता है, फिर उसके बाद डेंगू के ब्लड टेस्ट होते हैं और मतलब रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाती हैं। तो अगर डेंगू है, प्लेटलेट्स हो सकता है आपके नॉर्मल हो, आपको डॉक्टर बोले कि बेड रेस्ट या होम एडवाइस पे ही आपको मैनेज कर लिया जाता है, तो बट आपको कॉशियस रहना चाहिए और रेगुलरली जो है अपना

0: प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि अगर फॉल हो रहा है तो टाइम से जो है स्टेप्स जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए लिए जा सके।
1: जी, और प्लेटलेट्स कितना फॉल हो जाता है जब स्थिति गंभीर हो जाती है?
0: तो नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 लाख तक के नॉर्मल बॉडी में होते हैं, अप टू 1.5 लाख। अगर प्लेटलेट फॉल करना शुरू करते हैं अप टू 1 लाख तक तो हम लोग बोलते हैं कि क्लासिकल डेंगू जो है वो चल रहा है। अगर ज़्यादा फॉल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में अंडर 25,000 भी हो जाता है, वो सीवियर डेंगू रहता है जिसमें हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत जो है आवश्यकता पड़ती है। अगर प्लेटलेट काउंट 25,000 से ज़्यादा कम हो जाए या अगर आपका जो डेंगू है उसमें ब्लीडिंग कहीं से हो रही हो, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या मोशन के थ्रू ब्लड आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है।
1: अब इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है? व्यक्ति में घबराहट शुरू हो जाती है, जैसा आप बताया व्यक्ति शॉक में चला जाता है, हल्का बुखार भी होने लगता है, तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम डेंगू के शिकार तो नहीं हो गए।
0: तो डेंगू जो इन्फेक्शन है एक वायरल इन्फेक्शन है, ऐसा जिसके लिए कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। डेंगू जैसा मैंने बोला अधिकतर पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं जिनको हम लोग होम मैनेजमेंट भी एडवाइस करते हैं। होम मैनेजमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर बुखार हो रहा है तो हम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बुखार हो रहा है तो पैरासिटामोल लेना है, हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है,
1: मतलब जल की मात्रा।
0: हाँ, जल की मात्रा आपकी, क्योंकि आपको ऐसे सिम्टम्स हाइड्रेट फीवर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, वॉमिटिंग्स हो रही है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, तो ऐसे सब कंडीशंस के चलते डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप तरल पदार्थ, सॉफ्ट डाइट जो है, ऐसी चीज़ें सूप्स, तो सॉफ्ट चीज़ें जो है आप खाने में जो है उसका सेवन करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बॉडी पे रैश हो रहा है या ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं तो तुरंत से हॉस्पिटल या इमरजेंसी जाना जरूरी है।
1: ये तो हो गए उपचार की बात, हम अपनी सावधानियां किस प्रकार रखें, घर के आसपास अपने हाइजीन को किस प्रकार मेंटेन करें और खान पान में किस चीजों पर हम नियंत्रित रखें कि इस बीमारी से हम दूर रहें।
0: तो
1: क्योंकि मच्छर तो हर जगह है, पनप रहे हैं, और जो प्रमुख कारण है मच्छर काटने से बीमारी फैलती है, तो कैसे इन सब चीजों से बचा जाए?
0: तो जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सावधानी ऑब्वियसली हमेशा बेटर रहती है। और डेंगू जो है वो एक, क्योंकि मच्छर के काटने से हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने घर में और घर के आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखें कि पानी जो है वो जमा ना हो सके, खास करके ऐसे बारिशों के मौसम में जहाँ पर हमारे सीवेज वगैरह का ज़्यादा हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम रहता है, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, घर के आसपास पडल्स बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। इनफैक्ट घर में भी अगर हम लोग देखें तो गार्डन्स में, गमलों में, कूलर का पानी या बाथरूम में अगर कुछ ऐसे बाल्टियों में पानी वगैरह जमा रह रहा है या आपके टेरेस पे रह रहा है, तो वो एक सोर्स बन जाता है मच्छर के पनपने का। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि डेंगू के केसेस कई बार एक फैमिली में से बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि आसपास के सराउंडिंग में जो है मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा आई एडवाइस कि आप घर पे जब भी बच्चे बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो फुल बाजू की शर्ट्स वगैरह जो है वो पहन के जाएं और घर में मॉस्किटो रिपेलेंट और क्रीम्स का जो है आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जो है वो ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन, हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, खास करके उन लोगों को प्रिकॉशंस जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे केसेस में डेंगू जो है वो ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं।
1: जी, तो अपनी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। और जैसा आपने बताया कि घरों में जो अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है, जैसे आपके घर के गमलों में, कूलर में, या छतों पर छोटे छोटे कुछ टायर फेंके हुए हैं या कुछ मिट्टी के बर्तन हैं या कुछ लोहे के बर्तन हैं, उस पर पानी जमा हो रहा है और ऐसे में मच्छर वहाँ पनपने लग जाते हैं, और यही मच्छर जब आपको काटता है तो फिर आप डेंगू के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, संक्षेप में क्या कहेंगे? इस बीमारी से दूर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।
0: जी, डेंगू एक प्रिवेंटेबल जो है प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इसका प्रिवेंशन जो है वो बेटर है। और यदि आपको या आपके आसपास में किसी भी नोन पर्सन को, व्यक्ति को ऐसी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट डॉक्टर को। या
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में डेंगू लक्षण एवं उपचार, इस विषय में आपको बता रही थी डॉक्टर गगनजोत कौर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणि करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्वनिदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावीपरीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षासम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोरप्रावधानयुक्तं नूतनविधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामन्त्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वं कारगिल विजय दिवस समारोहं सम्बोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिमयुद्धविरामविषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिकादेशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानाम् 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानु इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Dekha, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा
4: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named the chairperson of the Delhi Commission for Women with Shyambala Maltivarma, Lata Sodi, Sanrekha Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Mohammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of minority communities and safeguard their constitutional rights. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the IMD issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagat Singhpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. US and Iran have paused attacks for a second straight day, raising hopes of renewed negotiations on an interim ceasefire after nearly 2 weeks of escalating military action. UN Ambassador to the UN, Mike Waltz, said yesterday, President Trump is giving diplomacy space, noting that Oman, Iran and other negotiators have been engaged in talks at all levels in recent weeks. India's weightlifting queen Meera Bai Chanu has won first gold medal for the country at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. She dominated the women's 48kg weightlifting event with a record-breaking total lift of 190 kilograms. The 31-year-old weightlifter set new Commonwealth Games records by lifting 85 kilograms in the snatch and 105 kilograms in the clean and jerk. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Meera Bai Chanu on her achievement. And that is the end of this news bulletin.

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए शेष बचे हुए कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अभी से थोड़ी देर के बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं धर्मू नायक और शहाबुद्दीन अंसारी के गाए चंद लोकगीत। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर सरिता में चंद गजलें। आज के फनकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही प्रादेशिक समाचार का समय होगा 8:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:00 हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी के, संयोजन प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारतीय कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। 2:55 पर होगा प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से। 3:00 विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 4:00 प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम सेहतनामा आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 5:00 प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे धर्मू नायक और शहाबुद्दीन अंसारी के गाए चंद लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश में धर्मू नायक और शहाबुद्दीन अंसारी के गाए चंद लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज

0: केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम स्वर सरिता। इस कार्यक्रम में हम आपको चंद गजलें सुनवा रहे हैं। आज के फनकार हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर।
1: जो है सो वो पाया नहीं जाता कहीं, एक आलम जुस्तजू में जी को अपने खो गया। बेकसी मुद्दत तलक बरसा की अपनी गौर पर, जो हमारी खाक पर से होके गुजरा रो गया।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार थे सोनाली राठौर और रूप कुमार राठौर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
8: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
7: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
3: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
4: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब चार हो गई है, इसमें एक

0: स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमरीका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो ये बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Government to introduce public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State governments and Union Territory administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of the upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent, and leverage technology to the maximum extent. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. The Prime Minister added that the government is also moving forward towards introducing a new law in the Parliament today with stringent legal provisions regarding examinations.
4: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा
2: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages, addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing. Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat My Bharat platform. The Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development.
4: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे
2: Speaking about the Viksit Vibrant Village program, the Prime Minister said the initiative was designed to inspire young people to visit, understand and engage with the country's border villages. He noted that the program received an overwhelming response with nearly 3 lakh youth participating in the competition, out of whom more than 400 were selected.
4: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है ये युवा मन में देश के लिए जीने देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है
2: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department IMD has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. IMD said Odisha will experience widespread to extremely heavy rainfall under the influence of a depression over the northwest Bay of Bengal. Several districts are under red, orange and yellow warnings with the administration maintaining heightened vigilance as the intense monsoon system continues to impact normal life. Heavy rainfall has triggered waterlogging, inundation and flood-like conditions in the parts of northern and coastal Odisha, prompting close monitoring by the authorities. More from our correspondent.
5: Odisha is in an intense monsoonal episode today as a depression over the northwest Bay of Bengal continues to unleash widespread rainfall across the state. The system is expected to move northwestwards and cross the North Odisha West Bengal coast between Paradip and Sagar Island around this forenoon or noon. The India Meteorological Department IMD has issued a red warning for Sundargarh, Keonzhar and Mayurbhanj districts for today, while orange warnings remain in force for several northern, central and coastal districts. In Bhadrak district, a flood-like situation has emerged in 7 gram panchayats of Banta block following a sharp rise in the Kapali River, disrupting road connectivity. The IMD has cautioned about thunderstorms, lightning and gusty surface winds, advising people to remain vigilant and avoid unnecessary movement in vulnerable locations. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
2: The nation pays tribute to former president and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. Union Home Minister Amit Shah paid tributes to the former President Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary. In a social media post, the Home Minister called Dr. APJ Abdul Kalam as the architect of India's space and missile program. US and Iran have paused attacks for a second straight day, raising hopes of renewed negotiations on an interim ceasefire after nearly 2 weeks of escalating military action. US Ambassador to the UN, Mike Waltz, said President Trump is giving diplomacy space, noting that Oman, Iran and other negotiators have been engaged in talks at all levels in recent weeks. Waltz also dismissed suggestions that the US is running low on interceptor missiles used to defend against Iranian attacks. Onto sports, India's weightlifting queen Meerabai Chanu has won first gold medal for the country at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. She dominated the women's 48kg weightlifting event with a record-breaking total lift of 190 kilograms.
6: There it is. Commonwealth record.

0: प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन का किया ऐलान। नंदन नीलकणी करेंगे नेतृत्व। संसद में आज आएगा कानून। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील। कहा, किसानों के मुद्दे पर सदन में सार्थक चर्चा हो। जेएसएससी ने परीक्षाओं पर स्थिति की स्पष्ट। कहा, टीडीपीएल एजेंसी का किसी भी परीक्षा से कोई संबंध नहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय। झारखंड में मॉनसून होगा मजबूत। और रांची में डोरंड कप 2026 का भव्य आगाज। उद्घाटन मैच में जमशेदपुर एफसी ने डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय, पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।
1: भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार आम आदमी को समर्पित है। गिरिडीह में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने 6 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही सीआईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी।
2: सार्थक अगर उनका प्रहार हो सरकार के ऊपर, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख से जो हाउस चल रहा है, पर चर्चा करें, हाउस को डिस्टर्ब नहीं करें, शोर शराबे में ना डाल दें हाउस को। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात, उन्होंने इस केस को हैंडओवर किया सीआईडी। जांच भी चल रही है, काले कारनामे में उनका नाम भी सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है।
0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट किया है कि टीडीपीएल एजेंसी का उसके किसी भी पूर्व, वर्तमान या आगामी परीक्षा के आयोजन या परीक्षा प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। टीडीपीएल एजेंसी को 25 मई में ही डी एम्पैनल कर दिया गया था। आयोग ने भ्रामक और तथ्यहीन खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पश्चिमी सिंहभूम में विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आयोजित युवा संवाद में जिले के 20 माय भारत युवा स्वयं सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से सीमांत क्षेत्रों के विकास, सामाजिक सहभागिता और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी

0: हुई थी। यह केंद्र हिंदी के अलावा नागपुरी सहित झारखंड की कई स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। झारखंड में कुल 60 लाख रुपए के इनामी 16 कुख्यात माओवादी कल आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी और 10-10 लाख रुपए के इनामी 3 जोनल कमांडर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार चल रहे माओवादी विरोधी अभियान और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां के राजनगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरवा ने संगठन को और सशक्त बनाने पर जोर दिया।
1: सरायकेला खरसावां जिला कमेटी एक बेहतर प्रयास कर रही है संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से। आने वाला दिन में इसका अच्छा परिणाम आएगा। जैसे गुरुजी का जयंती है, विमलदा का साधक दिवस, फिर रामदास जी का है, उसके बाद पार्टी संगठन का कार्यक्रम है। इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से कैसे किया जाए इसके लिए चर्चाएं।
0: सिमडेगा पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बैंक खाते में जमा 3 लाख रुपए भी फ्रीज किए हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
2: अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर करीब 150 ग्राम सोना तथा 1 किलोग्राम चांदी को बरामद किया गया है। 3 लाख डिपॉजिट किए हुए थे बैंक में, उनको फ्रीज कर लिया गया है। औजार उन लोगों ने प्रयोग किए थे कांडों में, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में रहा है, 6 केसेस में पहले भी जेल जा चुके हैं, 11 केसेस इन लोगों के ऊपर है।
0: मौसम। झारखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर अति गहरे निम्न दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से झारखंड के दक्षिणी हिस्सों विशेषकर कोल्हान, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा में अगले 48 घंटों के दौरान घने बादल छाने और भारी बारिश की संभावना है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण का शुभारंभ कल रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। उद्घाटन समारोह में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट, पैरामोटर प्रदर्शन और सैन्य बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित किया। मैच में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। ओमान के मस्कट में आयोजित यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटे झारखंड के 6 खिलाड़ियों का आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय महिला टीम ने रजत और पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टास्क फोर्स गठन की घोषणा वाली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, पेपर लीक रोकेगी हाई पावर टास्क फोर्स, नीले कड़ी होंगे अध्यक्ष। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 16 इनामी नक्सली कल करेंगे सरेंडर। दैनिक हिंदुस्तान की लीड है, डोरंड कप का आगाज, खेल के साथ दिखे देशभक्ति के रंग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ऋषिकांत को रजत, मीराबाई चानू को गोल्डन हैट्रिक। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन का किया ऐलान। नंदन नीलकणी करेंगे नेतृत्व, संसद में आज आएगा कानून। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील, कहा किसानों के मुद्दे

पर सदन में सार्थक चर्चा हो। जेएसएससी ने परीक्षाओं पर स्थिति की स्पष्ट, कहा टीडीपीएल एजेंसी का किसी भी परीक्षा से कोई संबंध नहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय, झारखंड में मॉनसून होगा मजबूत। और रांची में डोरंड कप 2026 का भव्य आगाज, उद्घाटन मैच में जमशेदपुर एफसी ने डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है। फिल्म है चांदनी, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने में है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन सच्ची प्रगति तब होती है जब हम अपनी ही कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि आज हम कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान, अधिक मेहनती और अधिक सकारात्मक बन गए हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आत्म विकास की यात्रा है। इसलिए दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यही आदत आपको सफलता के साथ साथ आत्म संतोष भी देगी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब सेहतनामा में बात करते हैं आज के इस जीवन शैली के बारे में। स्वस्थ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और मन प्रसन्न है तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। लेकिन आज की भागदौड़ी भरी जिंदगी में अनियमित दिनचर्या, तनाव, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आज इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो दिनचर्या की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। सुबह जल्दी उठना, कुछ पल शांत वातावरण में बिताना, ईश्वर का स्मरण करना या ध्यान लगाना मन को शांत और ऊर्जा से भर देता है। दिन की अच्छी शुरुआत पूरे दिन के व्यवहार और कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। आप सुबह उठ करके आप टीवी पे या मोबाइल पे कहीं पे भी भक्ति सॉन्ग या जो आपको ऐसा गाना या म्यूजिक जो आपको आपके मन को शांत करता है, उसे ऊर्जा देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, वैसा गाना जरूर सुने। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। हमारा भोजन ही हमारी सेहत की नींव है। भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज, दूध और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। अत्यधिक तला भुना मीठा और पैकेट बंद भोजन कम खाएं। भोजन हमेशा समय और धीरे धीरे चबाकर करें। नियमित व्यायाम करना भी जरूरी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलें, योग करें, प्राणायाम करें और या अपनी कार्य क्षमता के अनुसार शारीरिक कोई भी शारीरिक गतिविधि

कर सकते हैं। नियमित व्यायाम हृदय को मजबूत बनाता है, वजन को नियंत्रित रखता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ वयस्क के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 7 से 8 घंटे का नींद एक जो शरीर होता है, मतलब जब हम सोते हैं तो उसकी मरम्मत में के समय वो इस्तेमाल किया जाता है, वो नींद। जब आप नींद में आते हैं तो आपका शरीर में जो भी डैमेज होता है, या फिर एक मशीन होता है जिसको भी आराम की ज़रूरत होती है, जैसे चार्ज की ज़रूरत होती है ना, हमारा मोबाइल होता है ये जब डेड हो जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम इसे क्या करते हैं, तो चार्ज करते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर जब हम सोते हैं तो ये अपने आप को चार्ज करता है, यानी मरम्मत करता है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जीवन की समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समय चिंता करना समाधान नहीं है। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं, संगीत सुने, पुस्तकें पढ़ें और अपनी पसंद का कोई रचनात्मक कार्य जरूर करें। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की सलाह भी लें। संकोच बिल्कुल ना करें, आप चाहे जिस उम्र में भी हों। पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पानी शरीर की तापमान को नियंत्रित रखता है, पाचन में मदद करता है, शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। और एक सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, पानी आपको कैसे किस मात्रा में पीनी है, तो आपके वजन के हिसाब से हर 20 केजी पे 1 लीटर पानी पीने की आदत डालें। तो आप ये अपने आप में देख सकते हैं कि आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आप पानी पी सकते हैं। नशे से दूर रहें। तंबाकू, धूम्रपान, शराब जैसी आदतें शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। इनसे दूरी बनाकर आप कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। रिश्तों को समय दें। अच्छे रिश्ते भी अच्छी सेहत का आधार हैं। परिवार और मित्रों के साथ बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। सकारात्मक संबंध मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं। यदि आपकी उम्र बढ़ रही है या परिवार में कुछ बीमारियों का इतिहास है, तो समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना समझदारी है। इससे कई बीमारियों का समय रहते पता चल सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम, आराम, परिवार, मनोरंजन और आत्मविकास, इन सभी के बीच संतुलन ही अच्छी जीवन शैली की पहचान है। केवल धन कमाना ही सफलता नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और खुशहाल परिवार भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। अब ज्ञान विज्ञान में हम बात करते हैं आज नेब्यूला के बारे में। नेब्यूला क्या है? नेब्यूला अंतरिक्ष में फैला हुआ गैस और धूल का विशाल बादल है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और सूक्ष्म धूल कणों से मिलकर बना होता है। कुछ नेब्यूला इतने विशाल होते हैं कि इनका आकार सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैला होता है। सरल शब्दों में कहें तो नेब्यूला तारों का जन्म स्थान भी हो सकता है और कुछ नेब्यूला तारों की मृत्यु के बाद बनने वाला अवशेष भी होते हैं। कैसे बनते हैं? तो नए तारों के जन्म से पहले, जब अंतरिक्ष में गैस और धूल का बहुत बड़ा बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है, तो उसका केंद्र गर्म और घना हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ प्रोटोस्टार बनता है, जो आगे चलकर एक नया तारा बन जाता है। तारों की मृत्यु के बाद भी होता है ये प्रक्रिया। जब बहुत बड़े तारे अपना ईंधन समाप्त कर देते हैं तो वे सुपरनोवा के साथ फट जाते हैं। इस विस्फोट से गैस और धूल अंतरिक्ष में फैल जाती है और यह एक नया नेब्यूला बनाता है। और नेब्यूला के कई प्रकार भी होते हैं। ये कितने तरह का होता है? एक होता है उत्सर्जन नेब्यूला। इसमें मौजूद गैस पास के गर्म तारों की ऊर्जा को चमकने लगती है, जैसे कि ओरायन नेब्यूला इसका एक उदाहरण है। एक होता है परावर्तन नेब्यूला। ये स्वयं प्रकाश नहीं देते, बल्कि पास के तारों का प्रकाश परावर्तित करते हैं। इनका रंग अक्सर नीला दिखाई देता है। एक होता है अंधकार नेब्यूला। इसमें क्या होता है कि इसमें धूल की इतनी अधिक मात्रा होती है कि जो पीछे के तारे होते हैं वे उनकी प्रकाश दिखाई ही नहीं देती है और ये काले बादल के जैसे प्रतीत होते हैं, इसलिए अंधकार नेब्यूला इन्हें कहा जाता है। एक होता है ग्रहकार नेब्यूला। जब सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में बाहरी परत छोड़ते हैं तब ये नेब्यूला बनता है। एक होता है सुपर नोवा अवशेष वाला। बहुत विशाल तारे के विस्फोट के बाद बचा हुआ गैस धूल का बादल से ये बनता है और इसका एक उदाहरण है क्रैब नेब्यूला। अब ये भी जानने की बात है कि क्या हमारा सूर्य नेब्यूला बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सूर्य और पूरा सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना था, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। क्या यह ग्रह नेबुला भी बनते हैं? हाँ, तो ये भी बात सच है। जब एक नया तारा बनता है तो उसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल की जो चक्राकार डिस्क धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में बदल जाते हैं। नेब्यूला का रंग अलग अलग क्यों होता है? तो इसके पीछे भी कारण है। जैसे लाल रंग का है तो उसमें हाइड्रोजन की अधिकता है, हरा रंग है तो ऑक्सीजन गैस है, नीला रंग है तो धूल एवं तारों का प्रकाश का परावर्तन है। अंतरिक्ष में मानव आंखें जो अधिकांश नेब्यूला इतने चमकीले रंगों के दिखाई नहीं देते हैं, उसमें दूरबीन के द्वारा जो तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं, लंबे एक्सपोजर और कभी कभी वैज्ञानिक रंग संयोजक के कारण ये रंग अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसमें जो दूरबीन होता है उसको धीरे धीरे वैज्ञानिक उन तस्वीरों को इकट्ठा करके फिर कंप्यूटर में उसे डाल करके फिर वो पेश की जाती है और कलर गैस की क्षमता के अनुसार उसमें कलर कोडिंग की जाती है। इसके बाद हमें वो कलर फुल दिखाई देते हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध नेब्यूला में से एक है ओरायन नेब्यूला। ये सबसे प्रसिद्ध, इसको कहा जाता है कि यहाँ तारों का निर्माण होता है। एक है ईगल नेब्यूला, ये पिलर्स ऑफ क्रिएशंस के नाम से जाना जाता है। क्रैब नेब्यूला सुपरनोवा नेब्यूला विस्फोट के बाद ये बना हुआ है। एक है हॉर्स हेड नेब्यूला, घोड़े के सिर जैसे आकार वाली अंधाकार नेब्यूला है ये। और हेक्सल नेब्यूला जो ग्रह के आकार वाला नेब्यूला है, इसे हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। कुछ चमकीले नेब्यूला को साफ और अंधेरी रातों में दूरबीन या छोटे से टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। ओरायन नेब्यूला को आप आसमान में देख सकते हैं। अब आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप हमेशा खुश रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। कार्यक्रम जो हर पलामू से अपनी रेडियो दोस्त को, रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे। नमस्कार।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए

0: सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
1: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
1: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
1: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी,
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ,
3: देखिए,
4: रखो, मुझे छोड़ दो। हाथ वाले कहने में उतारो, मुझे छोड़।
3: ए,
2: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
7: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुलीमाल है।
7: हाँ प्रभु।
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
8: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
5: जाएं।
8: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
5: हाँ प्रभु, ना जाएं, खतरा है। ना जाएं प्रभु, ना जाएं,
7: ना जाएं प्रभु।
9: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुली मार

0: नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
1: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
2: हाँ ठीक है।

0: पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल दासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
3: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
3: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
6: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
5: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
6: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
5: जी मैं प्रस्तुत हूं।
6: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
5: जी अवश्य।

0: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
1: ओह, अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
1: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
3: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं,
5: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है।

0: हिंदी क्या, किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Meets Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said that the task force will focus on examination reforms and, based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. He said that the country's examination system must be

0: trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा.
0: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages. Addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. The Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat, My Bharat platform. Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said, when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development.
2: Viksit Vibrant Village ki ye yatra, sabko jodne और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है. और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है. आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है. भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे.
0: The nation pays tribute to former president and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. Union Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla today pay tributes to the former president Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary. Head of the Iranian Parliament's National Security Commission, Ibrahim Azizi, has warned Ukraine that a reported attack on an Iranian commercial vessel in the Caspian Sea will not go unanswered. In a social media post, Azizi said any attack on Iran comes with a cost and suggested Ukraine would face a response. IMD has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Central Maharashtra, Uttarakhand are expected to witness heavy to very heavy rainfall at isolated places. And that is the end of this news bulletin.

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी।
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक पंजाबी में भी किया।
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्भार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना

0: मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
1: टूर भी
0: हाँ
1: किया था उसको लेके,
0: नहीं टूर नहीं किया,
1: सिर्फ दिल्ली में किया।
0: दिल्ली में किया। हाँ और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं, मुनियर समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और 5-6 दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू तू मैं तू की कह रहा श्याम, वो तो चुप रहा है, वगैरह
1: अरे
0: वगैरह वगैरह।
1: बाप रे,
0: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
1: फगवाड़ा
0: चंडीगढ़
1: का,
0: का,
1: चंडीगढ़
0: हाँ
1: का।
0: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है, हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, और जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
1: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया, मराठी नाटक पंजाबी में
0: जी
1: होने
0: जी
1: लगा।
0: हाँ
1: यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
0: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता, लेकिन
1: जहां तक मुझे याद है
0: ईश्वर
1: आप आकाशवाणी भवन गई थी।
0: ने, हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ एकदम वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
1: जी
0: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
1: डिक्शन,
0: हाँ
1: जी,
0: डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
1: बड़े दिग्गज लोग।
0: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
1: ओहो,
0: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
1: श्याम
0: था
1: बेनेगल
0: श्याम
1: के एक्टर,
0: बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
1: दस्तक
0: की
1: फिल्म,
0: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
1: जी,
0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
1: उनको लेके
0: भोजपुरी
1: एक फिल्म
0: सिनेमा का
1: लॉन्च हुई थी संगत,
0: किसकी,
1: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
0: हाँ
1: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका
1: थे
0: हीरो था,
1: जी,
0: हाँ राकेश,
1: बाद में
0: वेरी
1: वासुदा ने
0: वेरी
1: एक
0: नाइस
1: फिल्म
0: फिल्म।
1: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
0: अच्छा
1: वो हीरो थे पर वो बनी
0: वो
1: नहीं।
0: नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार, फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
1: स्टार बने,
0: बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे, तब
1: जी
0: दुबला
1: जी
0: पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया,
1: शैलेंद्र
0: बहुत
1: सिंह
0: मजा
1: वगैरह भी
0: आया।
1: थे।
0: नहीं नहीं मेरे
1: अच्छा,
0: क्लास में नहीं थी ना, तो ये हुआ। और हाँ जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे, तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देश पांडे,
1: वाह वाह
0: हाँ
1: वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली ये, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्यों ना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो 3 कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया, और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन

0: अपन यहाँ आने वाले हैं।
1: क्या बात है, ये ख्वाब भी नहीं था कि
0: ख्वाब भी नहीं
1: अब
0: था
1: ये जगह जिंदगी ले जाने वाली
0: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए। और तब ये इश्तहार पढ़ा, जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है। एंड तो वहाँ चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
0: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
1: कुमार वासुदेव,
0: पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात है, वाह।
0: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में। तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविजन। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
1: जी,
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता,
0: यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला,
0: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह, और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहाँ ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था, और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह,
1: जी, से जी, हाँ, पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर
1: किया,
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड पेंटेड पोस्टर्स,
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहाँ हम पहुँच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जब मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना, तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे, तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को,
1: क्या बात,
0: तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर ऐसे

0: नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे हाँ पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल घिर की माँ के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे खुश हो जाओगे, और वो चलता है वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो,
0: वो
1: क्योंकि अब तो
0: कौम
1: पोस्टर सब
0: कौम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो
1: है
0: गई।
1: ना। MF हुसैन मिले थे जी,
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू मुझसे ज्यादा आपको मालूम है क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी
0: हो
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है, और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन, तो बहुत खुशी से वो हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये
0: यस,
1: ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन
1: तोलो तो ये नाराज
0: ये,
1: वाला जो
0: हाँ
1: मामला था
0: नहीं
1: वो
0: वो
1: बताइए।
0: कठिनाई आई, और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को,
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए, तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गए, हाँ, वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता, अच्छा कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
1: हाँ
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे
1: करते थे और
0: हाँ
1: खरजदार आवाज से रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के बोलते
0: माय डियर सिस्टर करके, फिर हम भाग के जाते थे पंकज दा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया, और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवाले, हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बीन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ, तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया, और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह वाह,
0: वैसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये करे, फिर अब राय चंद बोराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर, और रायचंद बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा

0: हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी जी
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर, उनको बोलना चाहिए। नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए, बोराल जी ऐसा नहीं,
1: अरे
0: पंकज से
1: बाप रे
0: उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये
1: कैसे
0: तो, अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी। मैंने
1: मनाया
0: कहा
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं, फलानों का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को आप मनाया आपने।
0: हेमंत कुमार, बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस के साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की, इस तरह हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस की इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है,
1: ओहो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज
1: जी
0: मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार।
1: डॉक्टर फिल्म का गाना,
0: जी
1: क्या बात है। 40s की फिल्म है शायद,
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है,
0: जी,
1: आई
0: जी.
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए नाम मतवारे तिहारे, ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पप्पी हा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार

0: पर ऐसे नहीं लगा, एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच, एक वो खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
1: विच इज नॉट
0: विच
1: ट्रू.
0: इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बहुत बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना। तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था, तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
1: जी
0: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज।
1: जी
0: देन इन माई फिल्म दी लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देर आर सो मेनी डिफरेंसेज। इनफैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हर सेल्फ अरुणा ईरानी
1: जी
0: डाइज यू नो इन द फिल्म, सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो देर वॉज नथिंग, रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
1: लोगों
0: अ
1: ने जबरदस्ती इसका कनेक्शन बना लिया.
0: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी।
1: जी
0: हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव। बट आई टेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर कन्विंस कि नहीं ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई। पर अब एंड
1: राखी साहब को
0: अनफो
1: कैसे राजी किया?
0: हाँ वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, वो झट से मान गए, वो बहुत माने। ही गेव गुड म्यूजिक, बट आई हैड फोर म्यूजिक डायरेक्टर्स
1: जी,
0: प्रेजेंट
1: पहली बार ऐसा हुआ.
0: या, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग भाई ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका,
1: जी
0: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टुगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, हाँ,
1: जी
0: नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल, हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म 2-3 दिन से ऊपर नहीं, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक। एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स टुक आउट प्रोक्लेमेशन सेइंग दैट प्लस चैनल विल नॉट गेट एनी थिएटर टू शो एनी फिल्म बिकॉज दे हैव नॉट पेड देयर ड्यूज। सो साज डिडंट हैव अ थिएटर,
1: अरे
0: तो
1: अरे
0: फिर
1: अरे.
0: टेलीविजन पे दिखाई,
1: जी.
0: तो ऐसा ऐसा हुआ। सो बैड लक ऑल द वे। सो इट्स नॉट बीन अ जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस, तो अनफॉर्चुनेटली साज वॉज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी।
1: जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ. एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो
0: जी
1: एक
0: जी
1: तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए
0: हाँ
1: मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव
0: संजीव
1: कुमार
0: कुमार हाँ
1: या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं
0: वो
1: जानना चाहता
0: अभी
1: हूँ.
0: वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है,
1: जी,
0: तो अच्छा,
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं.
0: तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही, फिर
1: जी
0: मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था,
1: जी
0: मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था, हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है। तब अमोल ने कहा

अभी देखो सही, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है। फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया।

0: मज़े का ये रहा कि मैं अमूल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही, मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी। और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे, वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है वो हवा में नहीं लिखा जाता
1: जी
0: लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है, वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम क्या कह रही हो, कहती हाँ मेरी बहन है लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई है। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही।
1: पूरी टूरी वाला
0: फिर
1: साला।
0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगी क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए, और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया।

0: कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट एंड देन शबाना'स नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेड अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल टू बेस, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल,
1: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग, लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए, जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी, हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मैंने और काम
1: भी, एंड देन वन डे,
0: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी, हाँ? जी,
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ? उसका नाम है बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी चुपड़ी
0: चुपड़ी, हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग।
1: वाओ,
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है, क्या है।
1: हाँ, हाँ। हाँ।
0: तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर काम शुरू हुआ एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य अकादमी का।
1: बिल्कुल, हाँ। और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो
1: जी।
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है, हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। उन तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि कितना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ हाँ अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान का सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? जैसे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है, वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊँ तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूँ बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूँ तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पर जाऊँ तो नसीर मेरे टेबल पर बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर रहा है। ऐसा नहीं नहीं हो गया हो गया, मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार।
1: ओ
0: तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली ही सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा। बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सर कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तोप अदा की? तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदाज, फिर वो चुप हो गए। अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है,
0: जब बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। वंडरफुल।
1: 3 अवार्ड्स मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है।
0: यस एंड ही हैड अ टेररिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी हाँ,
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वाज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार से। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो, इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बाशूस. और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे फंडिंग मिला. हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया, जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म. एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब. और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला. तो फिर वैसा ही हमने किया. फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई. सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का.
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे.
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो
1: मेरी जान, मुझे जान कहो,
0: क्या बात है, कनु रॉय. हाँ. अरे वो तो इतना गाना सुंदर है, प्लीज जरूर जरूर सुन.
1: क्या बात है.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

तो खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नवाब आरजू की रचना आप सुन रहे थे। ललित का संगीता, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो को आपने सुना। फिल्म एल्बम रात का ये गीत हमने आपको सुनवाया। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कल्याण जी आनंद जी का सर्वाध्यक्षीय ये भजन आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी की रचना थी। अलका याग्निक और साधना सरगम के स्वरों में नास्तिक फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: राजेश्वरी सचदेव को आप सुन रहे थे एल्बम थी हुल्ले हुल्ला रे, नक्श लालपुरी के बोल थे अमर हल्दीपुर की तरह थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: मीरा का मोहन इस फिल्म का दो गाना आप सुन रहे थे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इंदिवर की रचना थी, अरुण पौडवाल की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर

0: उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये गीत आप सुन रहे थे, टाइटल सॉन्ग था आप आए बाहर आई फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म अप्रैल फूल से, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
0: लाया? विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सेंटर बाबू, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार के बोल थे, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोता लम्हे, फिल्म का गीत आपने सुना, शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाजें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की और साथियों की भी आवाजें थी।
1: जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल,
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

जाए।

0: आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो।
1: आहा
0: ओहो।

0: बप्पी लाहिरी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओ। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: कल्याण जानन जी की तर्ज थी इंदिवर के बोल, मुकेश की आवाज। फिल्म सफर का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण

करने की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698 जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House.
1: I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Bracket Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024.
0: During the introduction of the bill, the opposition members were on their feet, demanding discussion of alleged police action during recent student protests over the NEET issue. Speaker Om Birla said members across political parties had been demanding deliberation on the issue of NEET, and the bill introduced in the lower house is an initial step towards reform. He stated that the bill is of significant importance and requires a comprehensive discussion reflecting both the will of the house and the sentiments of the nation. As the pandemonium continued, the speaker adjourned the house till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. when the House reassembled. After the first adjournment at 12 noon, the opposition again started protesting over the alleged police action on students. Due to the ruckus, Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the House till 2 p.m. The Supreme Court today agreed to hear tomorrow a batch of pleas alleging excessive use of police force against students protesting over the issue of examination paper leaks. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymala Bagchi and V. Mohana also agreed to take up a separate plea filed by a few family members of those police personnel who were attacked during the protest, along with other listed petitions. Chief Justice Suryakant today observed that the right to peaceful and lawful protest is constitutionally protected. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, said he will assist the court. Meanwhile, hearing another plea filed by RJD MP Sudhakar Singh following the cancellation of the NEET UG held on May 3rd over alleged paper leak and the announcement of re-NEET, the court said it will see what the Nandan Nilekani-led high-power task force formed by the government suggests on online conduct of the NEET examination. In Assam, the flood situation has improved as flood waters have receded in most of the affected areas. More than 37,000 people are currently taking shelter in 109 relief camps set up across the worst affected districts of Sivasagar, Golaghat, Jorhat and Charaideo. Government agencies are working on a mission mode to distribute relief materials among the affected people in these districts. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the United Kashmir People's National Party today called on the Pakistani authorities to exercise restraint and refrain from using force against peaceful protesters participating in the long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, from Rawalpindi to Muzaffarabad. The UK PNP said that over 40 people have lost their lives since June the 5th. Amid ongoing unrest in the occupied territory, the organization urged the United Nations, the European Union, the United States, the United Kingdom, Russia, and the wider international community to actively support efforts aimed at protecting civilians and promoting a peaceful resolution of the dire situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. 25 Commonwealth countries, including England, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Malaysia, Singapore, Scotland, Wales, Nigeria, Kenya, Jamaica, and Trinidad and Tobago, are expected to participate in the 7-day tournament. The championship will feature competitions across multiple categories before culminating in the finals on the 2nd of next month. Global crude oil prices were trading more than 5% lower today after the United States and Iran paused military strikes over the weekend. And with that, we end this news bulletin.
2: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक लाएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बनेगा झारखंड। बदलाव से तेज होगी रिफंड प्रक्रिया। भाजपा ने उत्पाद सिपाही परीक्षा पर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष ने की मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। माओवादी विरोधी अभियान को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर समेत 16 माओवादी मुख्यधारा में लौटेंगे, कल करेंगे सरेंडर। पलामू में डीईओ कार्यालय के लिपिक निलंबित। शिशु देखभाल अवकाश संचिका आगे न बढ़ाने पर विभागीय कार्रवाई। और ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही झारखंड महाराष्ट्र के बाद जीएसटी कानून में संशोधन लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। प्रस्तावित संशोधन से कारोबारियों के लिए कर प्रणाली अधिक सरल होगी, रिफंड प्रक्रिया में तेजी आएगी, छोटे निर्यातकों को राहत मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं।
3: उत्पाद सिपाही की प्रक्रिया में 19 लोगों की जान गई दौड़, उनको भी 1 करोड़ रुपया झारखंड राज्य की सरकार और कांग्रेस सबको उतर करके न्याय की मांग। छात्रों के हक के लिए पेपर लीक हुए परीक्षा से पूर्व, तो धांधली हुए हैं, अवैध रूप से लोगों ने पैसे का लेन देन किया है। झारखंड के युवा जानना चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर मौन क्यों है। युवाओं का भविष्य खराब किया है, अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। कांग्रेस को अपनी स्थिति का स्पष्ट रूप से विचार।
2: पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्रों के शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने इसे प्रारूप मतदाता सूची के समयबद्ध प्रकाशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इससे पहले पोड़ाहाट अनुमंडल ने यह कार्य पूरा कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया था। अब 29 जुलाई तक प्रपत्रों के सत्यापन के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में कुल 60 लाख रुपए के इनामी 16 कुख्यात माओवादी कल आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी और 10-10 लाख रुपए के इनामी 3 जोनल कमांडर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार चल रहे माओवादी विरोधी अभियान और राज्य सरकार के आत्मसमर्पण

0: एवं पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। सावन माह को लेकर खूंटी के आमरेश्वर धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि भीड़ को देखते हुए प्रत्येक रविवार और सोमवार को अतिरिक्त पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
1: पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था के बारे में तो उस जगह को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है, लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। पब्लिक से अपील ये रहेगा हम लोगों का कि जो पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, सब लोग अपना फोर व्हीलर या टू व्हीलर उसको वहीं पे खड़ा करें। ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का होता है, उसको हम लोग कर्रा के रस्ते होकर को डाइवर्ट करेंगे। 28 अगस्त को मेन मेला लगेगा, उस दिन हम लोग ट्रैफिक वहां से मूवमेंट है उसको कम्प्लीटली रोक करके रखेंगे।
0: पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित तथा प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के आदेश पर यह कार्रवाई सहायक शिक्षिका के शिशु देखभाल अवकाश से संबंधित संचिका समय पर प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लातेहार स्थित क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। हजारीबाग में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देना और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। जिला युवा अधिकारी रुद्र शेखर ने युवाओं से नशा मुक्त जीवन अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये हजारीबाग में हम लोग नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है यहाँ पे और इसके बाद राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय भी होने वाला है। विभिन्न कॉलेजेस है, यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस है और अलग अलग इंस्टीट्यूट है, आपको सिंगिंग के, डांसिंग के अकेडमी है, वो सभी हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे।
0: रांची में 2400 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 6 नए जीआईएस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव ट्रांसमिशन निगम को भेजा है। JBVNL रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कुसई, बूटी, सरवल, दसमाइल, इटकी और नावासोसो में ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इससे लाइन लॉस, वोल्टेज ड्रॉप और खराब मौसम के दौरान होने वाली बिजली व्यवधान में कमी आएगी तथा रांची शहर में अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भू राजनीतिक तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह कारोबार के दौरान तेजी देखी गई। सेंसेक्स 675 अंक की बढ़त के साथ 76,734 पर और निफ्टी 192 अंक उछलकर 23,959 पर कारोबार कर रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी, रियल्टी और मीडिया क्षेत्रों के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी दर्ज की गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। भारत की भारोत्तोलन क्वीन

0: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है।
1: तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। हमारे नेशनल एंथम जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं। खुशी के ही आंसू है कि मैंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल दिया। इसी के लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे इंडिया भरवासी को।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक लाएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बनेगा झारखंड। बदलाव से तेज होगी रिफंड प्रक्रिया। भाजपा ने उत्पाद सिपाही परीक्षा पर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष ने की मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। माओवादी विरोधी अभियान को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमांडर समेत 16 माओवादी मुख्यधारा में लौटेंगे। कल करेंगे सरेंडर। पलामू में डीईओ कार्यालय के लिपिक निलंबित। शिशु देखभाल अवकाश संचिका आगे न बढ़ाने पर विभागीय कार्रवाई। और ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को खराब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30 से 35 मोबाइल आपने खराब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफर प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है। जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा के अदृश्य हाथों में हाथ डाल कर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों, नदियों, पौधों, सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें है श्रोताओ, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

मीनू मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं, प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है, हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं, वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी ही विनम्रता से धरती में समा जाती हैं, न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती हैं। अगर ये बूंदें अपने बादलों से बिछड़ने का साहस न करती तो शायद धरती कभी इतनी हरी भरी न होती। कभी कभी जीवन में बिछड़ना भी नई शुरुआत का कारण बन जाता है, यही अनंत सफर बादल से धरती, धरती से नदी, नदी से सागर और फिर सागर से बादल, सफर चलता रहता है कभी थमता नहीं। मुझे एक बात बताइए श्रोताओं, क्या आपने ओस की बूंदें देखी हैं और क्या इन्हें पत्तों पर कभी छुआ है, तो जरूर बताइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि बारिश के मौसम में बादल आसमान में छाए हों और बारिश न हो रही हो तब भी बूंदों का एहसास मन में बना रहता है, जादुई भी है बारिश, संगीत ले आती है, धुआं धुआं सा आसमां बना देती है, बादल भरे भरे गगरी सी छलकाती प्रतीत होते हैं और ऐसे में मन का हाल न पूछो, मन तरल हो उठता है, पिघलते आसमान धरती को कितने सुकून से भर देता है, ये तो हम चारों तरफ की हरियाली देखकर जान जाते हैं।

जो मोती हम पहनते हैं श्रोताओं, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें जरूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो जरूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो, बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतजार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी।

बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदे भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं।

कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो सारे नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल, विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है। और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं यह आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसी नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूं ने लिखा ये गीत था, राजन कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूट कर पानी की बूंदें जब हैं गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती, स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसी संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदे दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाए जब नन्ही वर्षा की बूंदे चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती, कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है, आप ये गीत सुनिए श्रोता और बताइए किस फिल्म का है।

गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है, और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरणिया, और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी यह ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचाई से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व तो बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजो कर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओं? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफर पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं, और क्या ऐसा सफर आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफर पर हैं? ये कौन हैं कलाकार श्रोताओं जो सफर पर निकले हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्कुरा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि FM पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सड़क कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

0: शहर और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा।
1: आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं रहिए विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए, जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा, हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नजरों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: trade, West Texas Intermediate crude was trading 5.8% down at $84.14 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices at home were trading around 1% higher during the afternoon session today amid easing geopolitical tensions and lower crude oil prices. The Sensex climbed 656 points to 76,716, while the Nifty rose 189 points to 23,956 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 Index surged over 1%, while the Small-Cap 100 Index soared 1.2% a short while ago. The United Kashmir People's National Party, UKP NP, today called on the Pakistani authorities to exercise restraint and refrain from using force against peaceful protesters participating in the long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, from Rawalpindi to Muzaffarabad in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The UKP NP said over 40 people lost their lives since June the 5th amid ongoing unrest in the occupied territory. The march came after talks between JAAC and Pakistani authorities failed to produce a mutually acceptable outcome, prompting a renewed call for public mobilization. The organization urged the United Nations, the European Union, the United States, the United Kingdom, Russia and the wider international community to actively support efforts aimed at protecting civilians and promoting a peaceful resolution of the dire situation in POJK. On the other hand, amid criticism over suppression of fundamental freedoms, the Legislative Assembly elections are currently underway in POJK. News just in, Rajya Sabha has been adjourned till 3 p.m. and Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. Today is the death anniversary of former President and renowned scientist Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India. Dr. Kalam is remembered as one of the greatest teachers ever. He played a pivotal role in India's defence and space research development. More from our correspondent.
1: Born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu, Dr. Kalam specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully injected the Rohini satellite in the near-Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. The former president was also responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश, विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
2: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
5: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
2: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
6: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
2: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
7: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
2: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
8: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगी, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिनट तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
9: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
10: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
2: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
11: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
2: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतरा।
13: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की, जिसने बिना किसी फिल्मी परिवार से जुड़े हुए अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर इस इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी खास अभिनेत्री कृति सेनन की। जी हाँ, आने वाले लगभग दौर में कृति ने अपना नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर ला दिया है। तो सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

हसरत जयपुर का लिखा ये गीत आपने सुना शंकर जयकिशन की तरफ थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में छोटी सी मुलाकात फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, रहिए विविध भारती के संग।

0: शिशु मृत पाया गया। पाकुड़ में राष्ट्रीय एसटीएससी हब के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सरकारी खरीद नीति, कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता की जानकारी देकर उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के निदेशक अरुण कुमार इक्का ने एसटीएससी उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की जानकारी दी।
1: इस कार्यक्रम के तहत जितने भी एसटीएससी समुदाय के जो उद्यमी हैं, लघु उद्यमी हैं, उनको हम लोग सरकार का लाभ कैसे वो ले सकते हैं और अपने लघु उद्यमी बनने का जो सपना साकार करना चाहते हैं लोग, इसमें आगे बढ़ के आगे काम कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया।
0: सावन माह को लेकर खूंटी के आमरेश्वर धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि भीड़ को देखते हुए प्रत्येक रविवार और सोमवार को अतिरिक्त पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचा में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक के साथ भारत के लिए दोहरी जीत दर्ज की। 21 वर्षीय ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 निशाने लगाए। पेरिस 2024 ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली मनु ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सखी सहेली कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सखाओं को प्यार भरा नमस्कार और दीपा जी आपको भी नमस्कार।
2: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सखाओं श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार।
1: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई, हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं हेल्दी नमस्कार करते हैं और दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं।
2: जितना और स्वास्थ्य भी,
1: बिल्कुल स्वास्थ्य जरूरी है और कुछ जैसे हम कहते हैं ना जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से, और अब क्योंकि बारिश का मौसम है यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है कुछ गर्म हो जाता है
2: और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता या हमारी बहन कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया, तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा, और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की और अब बारिश का मौसम है तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं, तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर अपने आप को बचाने के लिए।
2: हाँ,
1: उन चीजों की हम बात करेंगे।
2: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दिनों में, बिजली की तार कहीं खुले हैं कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
1: बिल्कुल
2: करेंगे।
1: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं तो उस वक्त आप अपना बचाव करेंगे, और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
1: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है, लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो इसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
2: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
1: हाँ,
2: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्की दी रोटी और सरसों का साग जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता
1: है। अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी सरसों दा साग इसकी बहार ही बहार होगी।
2: बिल्कुल सही कहा, और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें।
1: हाँ,
2: इस बारे में ये जीवन का आधार है विश्वास करना, भरोसा करना, तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा,
1: हाँ,
2: इस बारे में जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल,
2: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
1: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं
2: जी।
1: लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
2: बिल्कुल, और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
1: कहानी का। हाँ, तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
2: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय, इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी।
1: ये तो हुई आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात, तो कहानी सुनेंगे लेकिन पहले एक गीत सुन लेना बड़ा जरूरी है।
2: चलिए

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
2: कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।
3: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
4: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
3: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
4: मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
3: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
4: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
3: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
4: अच्छा, स्वीकार है, एक सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
3: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
4: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
5: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में दो एक दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई, ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को एक सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
3: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हां, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
5: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
6: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
3: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
6: चाचा जाने भी दो।
3: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, यह भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता। नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा लें और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
6: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है, पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
3: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है, मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है, मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
6: चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
3: बेटा ईश्वर जानता है मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है, गांव भर घूम आया किसी ने उधार न दिया, क्या करूं क्या करूं। बेटा तेजा सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
5: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
6: चाचा बापू से ये हाल कहां है।
3: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा। एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था, घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कराता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
6: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है।
3: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
6: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
3: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
6: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
3: अरे बेटा भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे, तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
2: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी।

0: का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
1: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
2: बिल्कुल।
1: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
2: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियां यहाँ बैठे कि अगर जीवन में भरोसा ना होना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना हो,
0: हाँ
1: तो ये अगला जो जो 1 घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप
0: बिल्कुल।
1: सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
0: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे, और वाकई बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं,
1: जी
0: लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें,
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा।
1: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
0: हाँ
1: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
0: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर, दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से, हाँ, और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है। तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता,
0: ये तो बात सही है।
1: बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता।
0: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है।
1: बिल्कुल
0: कस्में खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेगा लिया लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
1: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
0: हाँ
1: ऐसा नहीं होता है ना
0: बिल्कुल नहीं होता।
1: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों,
0: बहुत सही बात
1: है
0: कही
1: ना,
0: तुमने।
1: या
0: हाँ
1: फिर

0: उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हो, इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
1: भरोसा, यानी विश्वास। बहुत सही बात
0: है। और जिसकी जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा, बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर ही भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा या माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जब हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
0: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
1: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
0: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।

0: और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो वाकई
1: जी
0: दुख पहुंचता है।
1: बिल्कुल। और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती
0: और
1: है।
0: उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए।
2: ए डम डम मक ए डम डम मक

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे
0: बहुत
1: की।
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं। आगे उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ ऐसे शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते हैं ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसने हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा। पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
0: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
1: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर ये भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
0: बिल्कुल,
1: एक
0: और
1: संदेश
0: बहुत
1: में
0: सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहती है कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है, ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नज़दीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें, और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए इसका ख्याल रखें, बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें, कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
1: और घर में जो अर्थिंग के तार होते, कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जल भराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है। तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्ढी, पालक एक गड्ढी, बथुआ एक गड्ढी, मेथी एक गड्ढी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3

0: तीन सीटी ले लें मध्यम आंच पर, और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी के मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें, और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें, और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
1: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है, और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो आप अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान
0: हो जाता है, और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
1: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं, जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
0: बिल्कुल
1: उन्हें कुलचे कहा जाता है, जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सरकार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही झारखंड महाराष्ट्र के बाद जीएसटी कानून में संशोधन लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ मुआवजे देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं को लेकर आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा ने धरने का समर्थन करते हुए सफाई, पेयजल, सड़क और जल निकासी जैसी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर आज साहिबगंज रेलवे स्कूल और मालदा तथा साहिबगंज स्टेशनों के निरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में साहिबगंज पहुंचे। उन्होंने साहिबगंज रेलवे हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी के जायदा पुल के पास नहाने के दौरान लापता ट्रेलर चालक का शव आज एनडीआरएफ ने बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के दो रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंच गए, जबकि दिल्ली स्थित परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। रांची में 2400 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 6 नए जीआईएस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव ट्रांसमिशन निगम को भेजा है। जेबीवीएनएल रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कुसई, बूटी, सरवल, दसमाइल, इटकी और नावासोसो में ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी।
2: काफी साल पहले वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
3: जी जी।
2: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
3: क्या बात,
2: शुक्रिया एक बार और।
3: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
2: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
3: ओके।
2: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली।
3: हाँ हाँ।
2: और मैंने बीएससी भी लिया था, और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
3: ओके।
2: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए।
3: जी जी।
2: कि एनवायरमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
3: जी जी।
2: पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ, बाद में आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए।
3: जी जी।
2: खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
3: ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
2: जो टिपिकल टर्म है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है।
3: जी।
2: ऑप्थेल यानी आय, तो आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
3: जी। इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
2: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले

0: 7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम हैं, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा। पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
0: जी
1: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है।
0: ड्राइनेस रूप है इसका, एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो किकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए,
1: वो कोई
0: कहीं दूर देखिए।
1: फॉर्मूला बताया गया ना?
0: ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मूला है,
1: जी
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन
1: जी
0: एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता
0: और
1: है।
0: दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे,
1: जी
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो
0: जब
1: ज्यादा
0: जब
1: चमकीली होती है।
0: ज्यादा चमकीली रहती हैं तो उसका
1: जी
0: जो ब्राइटनेस रहता है तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है।
1: जी

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरदर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
0: अच्छा,
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफी लोगों को

0: खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग के हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं। अब समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
1: सस्टेन करना मुश्किल
0: सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक
1: है
0: जाती
1: वो भी
0: है।
1: थक जाती हैं।
0: जी
1: क्या बात है।
0: जी
1: तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना
0: जी
1: मुश्किल है, हमें ये
0: जी
1: मान लेना चाहिए
0: जी
1: कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं
0: नहीं
1: होगा,
0: होगा।
1: तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिर दर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
1: जी
0: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
1: जी
0: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
1: जी जी
0: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है। वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजली 80 to 120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12 to 18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम BP मेजर करते हैं, वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है, वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं।
1: जी जी
0: ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
1: अच्छा
0: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
1: जी
0: वो एक
1: जी
0: अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं, उनका शेप साइज, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। और कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज वगैरह, उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में। ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका BP भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए, आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है
1: जी
0: ग्लोकोमा जो है। मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूं आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है, अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए। आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता, कुछ ही नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
1: ओ गॉड।
0: तो
1: जी
0: क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है कि
1: ओके
0: आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है।
0: सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है।
1: ओ
0: अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई
0: रोशनी गई
1: एक उम्र के बाद,
0: जी
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे
0: जी
1: हैं, ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराएं,
1: उसका
0: और
1: फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये सेम चीज है,
1: कॉमन सेंस,
0: कॉमन सेंस है। 40

0: हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
1: चेक 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
0: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं।
1: संभावना 50% है माता के साइड से या पिता के साइड से।
0: जी जी,
1: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
0: जी,
1: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया।
0: सही बात,
1: कहीं मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
0: पूरे फैमिली ट्री।
1: तो बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती हैं हमको, विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीजें में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने एक साल उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए। सिंपल,
0: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी एक उम्र के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह, जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
0: जी।
1: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
0: जी।
1: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं।
0: जी जी,
1: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अब समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
0: जी,
1: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
0: जी।
1: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
0: जी,
1: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
0: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
1: एक बात मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है ये गलत है मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
0: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
1: एग्जैक्टली,
0: ये दे रहा है मैं लूं कि नहीं।
1: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
0: जी,
1: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
0: डॉक्टर नहीं है।
1: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है, चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है
0: जी।
1: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होने चाहिए।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं। ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना चाहिए।
1: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता
1: जी,
0: और दूसरी तरह की भी जांच होती है, वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: वो बिठाया जाता है बहुत देर तक।
1: देखिए, ये एक साइंस है
0: जी,
1: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो। बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
0: नहीं
1: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का है, 50 साल पहले का कंसेप्ट है।
0: जी, जी जी,
1: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम, हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं
0: जी,
1: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूं घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
0: जिम्मेदारी
1: और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
1: ओके, जरूर,
0: है ना।
1: थैंक यू।
0: आंखों में क्या जी, फिल्म का नाम 9-2-11।
1: बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफ़ी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स
0: जी,
1: में
0: जी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज़ वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज़ है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नज़दीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नज़दीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज़ होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा नज़दीक ले रहा है. ये दूसरी चीज़ है, टीवी के नज़दीक जाना या तो बहुत नज़दीक से लेके पढ़ना. तीसरी चीज़ है, काफ़ी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फ़र्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए. तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है. और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो आंख बाहर निकल जाती है. आपने दोनों देखा रहेगा, बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए.
1: जी,
0: तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है.

0: जी। और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
1: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
0: जी।
1: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा, या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है, जो कि बीच की किकी रहती है, उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे, तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए।
0: जी, कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है, जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
0: जी
1: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी के वजह से भी होती है। अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं, जिसके वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है,
0: जी
1: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े, उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना
1: जी
0: चाहिए और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर रहे?
1: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको ऑनेस्टली कहता
0: जी
1: हूं, वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम
0: जी
1: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में, किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
0: जी
1: संतुलित आहार कहते हैं। आप
0: बिल्कुल
1: कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है,
0: बिल्कुल
1: जिसके
0: बिल्कुल
1: अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए, इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है।
0: जी
1: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है, जो आजकल नहीं होता। और दूसरी बात है, पानी पीना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। सभी बाहर जाइए, बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको। तो पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल। आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे PhDs आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और
0: विद्वान
1: सभी
0: लोग हैं
1: बहुत ही हमसे बड़े PhD हैं सारे।
0: जी।
1: अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जहां पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियां ऐसे रगड़ो तो आपके आंख का नंबर चले जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि
0: ओके
1: डॉक्टर साहब, अगर हम आपके ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे, मतलब कर लगे रहो, तो बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही, आप मुझे आके बताओ तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, GM डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
0: बिल्कुल
1: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, वड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी, इंस्टेड ऑफ
0: बिल्कुल
1: हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं,
0: जी
1: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो
0: उसके लिए
1: तो
0: अलग तरह की सावधानियां।
1: उसकी अलग तरह की सावधानी है।
0: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
1: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
0: कंफर्ट
1: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से।
0: जी जी जी
1: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो
0: जी
1: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे
0: हाँ
1: नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है,
0: बिल्कुल।
1: दूसरी बात ऑल्सो जैसे मैंने कहा आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है, और तीसरी बात है आंख का नंबर आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है, वो
0: जी
1: आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह है। अब आप मुझे बताइए अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया।
0: हाँ बिल्कुल, तो
1: आप
0: फिर
1: समझे,
0: आप
1: तो
0: इस
1: ये
0: पे भी सवाल नहीं उठा सकते।
1: नहीं सवाल नहीं, समझना जरूरी है, सवाल तो जरूर उठाइए।
0: जी जी
1: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है, जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
0: ओके बिल्कुल बिल्कुल।
1: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं,
0: जी
1: और ये उल्टा साइंस है, जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है कोई भी इमेज हो
0: वो क्लियर
1: वो
0: बनेगी।
1: क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए
0: बिल्कुल।
1: शेप और साइज में, ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स से हम सब पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स दोबारा देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये

0: बड़े इसलिए दिखा जाता है,
1: जी जी
0: ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है आंख
1: जी
0: की
1: जी जी
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं, इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15 साल 20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है, बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो।
1: बिल्कुल
0: मैं तो ऑलवेज कह रहा हूँ इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, दृष्टि।
1: बिल्कुल
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी
0: जी
1: चाहिए,
0: नहीं,
1: अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना
0: और
1: चाहिए।
0: 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए,
1: जी
0: क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है,
1: जी
0: ये ग्रोथ,
1: जी
0: जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
1: जी
0: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आप बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग
1: जी
0: जाते हैं, बड़े
1: जी
0: नंबर वाले चश्मे लग जाते
1: जी
0: हैं। वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि
1: जी
0: चश्मा हटाया जा सकता
1: जी
0: है?
1: जी तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है।
0: जी
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी
1: उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की, और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है।
0: अच्छा,
1: उसका एक कैलकुलेशन है, और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
0: तो
1: और
0: नहीं कर
1: लेजर हो
0: सकते।
1: जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आंख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
0: ओहो
1: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो
0: जी,
1: जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
0: करेक्ट।
1: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है, एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा, तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो अगर 20 पे आपने करवा लिया तो,
0: जी
1: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है, कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो, काफी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है।
0: जी
1: और जो भी उम्र की वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे,
0: जी
1: आंख
0: जी
1: जो है तो वही है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा
1: उसका
0: है।
1: सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है,
0: जी
1: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
0: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है।
1: जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
0: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
1: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है, बुजुर्ग लोग हैं, और ज्यादातर मोतिया होने के ऑपरेशंस किए जाते हैं,
0: जी जी
1: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है,
0: जी जी
1: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं,
0: जी बिल्कुल,
1: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है, कि जब आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन है
0: जी।
1: तो आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है। आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबॉडी। जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया।
0: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है
0: जी।
1: और हम कितनी भी कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहां वहां है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है।
0: बिल्कुल,
1: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं
0: जी,
1: बिकॉज इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
1: तो आंख तो, और आंख को तो सबसे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा ऐसे आंखों के थ्रू ही दिखेगा।
0: परफेक्ट बात है। यहां एक गाना सुनते हैं
1: जरूर,
0: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी, अरे वाह।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा
2: अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है। नमस्कार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं को लेकर आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा ने धरने का समर्थन करते हुए सफाई, पेयजल, सड़क और जल निकासी जैसी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर आज साहिबगंज रेलवे स्कूल और मालदा तथा साहिबगंज स्टेशनों के निरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में साहिबगंज पहुंचे। उन्होंने साहिबगंज रेलवे हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। रामगढ़ सदर अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चियों की माताओं को सम्मानित कर किट वितरित की गई। अधिकारियों ने बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला स्तरीय CSR समिति की बैठक हुई। इसमें हिंडाल्को की CSR योजनाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मन्नू भाकर ने कांस्य पदक के साथ भारत के लिए दोहरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
3: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
2: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
3: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
2: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
3: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5।

हमने कहा ना कि बारिश तो धरती का उत्सव है। जैसे ही मौसम की पहली बूंदें पड़ती हैं, मुस्कुराने लगते हैं पेड़ पौधे। देखिए तो कैसे पत्तों का रंग उजला हरा हो जाता है, घास जैसे नाच उठती है, फूलों पर ठहरी बारिश की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, पंछी चहचहाते हैं तो लगता है कुदरत के इस उत्सव में चल रही है कोई जुगलबंदी। ऐसे मौसम में नदियां और तालाब भी झूम पड़ते हैं, झरने भी गुनगुनाते हैं, बादल छेड़ देते हैं कोई राग। ऐसे मौसम में उदासी घुल जाती है, धुल जाती है। चलो बारिश में भीगने निकल पड़ो।

बारिश सबको खुश नहीं करती, बारिश किसी किसी को उदास भी करती है। सवाल यह है कि इतनी झूमती हुई खुशियों वाली बारिश किसे उदास करती है? बारिश उसे उदास करती है जिसका साथी उसके पास नहीं। बारिश उसे उदास करती है जो किसी का हाथ पकड़कर सराबोर होने निकल नहीं सकता। बारिश उसे उदास करती है जो अकेला है। बारिश अकेले लोगों के लिए एक तकलीफ है। अकेले लोगों के लिए बारिश बहुत सारी यादों की जुगनू लेकर आती है जो उनके अकेलेपन को रोशन करते हैं।

0: चाहे गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता।
0: हम अभी हाजिर हुए।

तपती धरती पर राहत के कुछ छींटे पड़े। जब ठंडक मिली तो सब झूम उठे। बारिश का ये मौसम धरती के चहेतों के लिए काम का मौसम है। मेहनत के पुजारी, धरती पर बीज बिछाने वाले किसान, जो पूजा करते हैं इस धरती की, बीज बिछाते हैं प्यार के, ताकि दुनिया में कोई भी भूखा न रहे। बारिश के इन दिनों में भीग भीग कर खेतों में काम करने वाले किसानों को सलाम, उनकी मेहनत, उनकी लगन को सलाम। सचमुच हम उनके कर्जदार हैं।

चलो मिलकर भीगे बारिश में, तुम कुछ गुनगुनाओ और तुम्हारे साथ जुगलबंदी करे ये बारिश। इस झूमती बारिश में शहर की सड़कें नापने का लुत्फ ही कुछ और होता है। शहर अगर समंदर के किनारे हो, लहरों में सराबोर होने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पास में है कोई नदी, तालाब या झरना, तो उसका तिलस्म बारिश में देखते ही बनता है। बारिश रूमानियत का मौसम है। बारिश की इस रूमानियत को किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

0: से।
1: तो इस बारिश में क्या कर रहे हैं आप? अपनों की टोली के साथ पिकनिक का कोई इरादा है या फिर बस कमरे में बैठकर खिड़की से बारिश के छींटे पड़ते देखने हैं? अगर आपके अपने साथ हैं तो ये बारिश आपके लिए है एक संगीत से भरा मौसम, और अगर आप अकेले हैं तो ये बारिश आपके लिए विरह की चुभन लेकर आई है। जिंदगी का एक पहलू विरह भी है। जब कोई अपना दूर हो तो शिद्दत से पुकारना चाहिए उसे, और इंतजार करना चाहिए उन दिनों का जब मिले अपने साथी का साथ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार। 35 मिनट पर हम आपको सुनाएंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेगा खेती बारी शाम 6:02 से। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनिएगा ग्रामीण सभा 6:30 पर। हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से। लौटेंगे स्टूडियो 7:15 पर और सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। स्वास्थ्य चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेगा कल्याणी 7:45 से। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ले गए पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता। विषय होगा खट्टी डकार भी बीमारी का लक्षण। बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।

रात्रि 8 बजे हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी में समाचार। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे चित्रपट से 8:15 पर। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज 8:09 रात्रि 9 बजे और उर्दू में खबरें 9:15 से। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनेंगे संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा। रात्रि 11 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

घरांगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हुसैन सिन्हा। बातें करेंगे सबसे पहले विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर। यह हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, ये इसका उद्देश्य है। हेपेटाइटिस से संबंधित बीमारी से हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, इसलिए हमें जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए बेहतर रोकथाम, निदान और उपचार पर कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी मिलकर सबसे आम संक्रमण है और इनके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन मौतें और 2.2 मिलियन नए संक्रमण होते हैं। निदान उपचार के लिए बेहतर उपकरण और उत्पाद की घटती कीमतों के बावजूद प्रशिक्षण और उपचार कवरेज करें। दरें जो रुकी हुई हैं, लेकिन अगर अभी से त्वरित कार्रवाई की जाए तो 2030 तक WHO के अनुसार हम उन्मूलन लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे।

0: इस गीत के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनवाते हैं एक वार्ता।
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव सभ्यता का नया अध्याय। प्रस्तावना। मानव जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने जीवन को सरल, सुरक्षित और उन्नत बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। कभी पत्थरों के औजारों का निर्माण हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे महान आविष्कारों ने संसार को बदल दिया। आज मानव जिस युग में जी रहा है वह तकनीक और डिजिटल क्रांति का युग है। इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और चर्चित तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मानव सोच का विस्तार है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। आज AI ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, व्यापार, न्याय, सुरक्षा, बैंकिंग, परिवहन, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में AI का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोग AI को मानव जीवन के लिए वरदान मानते हैं क्योंकि इसने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वहीं कुछ लोग इसे चुनौती और खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि यह मानव रोजगार, गोपनीयता और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए AI के लाभ और हानि दोनों समझना अत्यंत आवश्यक है। आज संसार डिजिटल युग से आगे बढ़ AI युग में प्रवेश कर चुका है। आने वाला समय में यह तकनीक मानव जीवन को और अधिक प्रभावित करेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम AI को केवल तकनीक के रूप में न देखें बल्कि उसे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को भी समझें। AI क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित और इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता अर्थात ऐसी कृत्रिम प्रणाली जो बुद्धिमानी से कार्य कर सके और उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब मशीनें मानव की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने लगें तो ये उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। AI का उद्देश्य ऐसी मशीनों और कंप्यूटर प्रणालियों का निर्माण करना है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य कर सके। ये मशीनें अनुभवों से सीख

करती है, डेटा का विश्लेषण करती है और समय के साथ अपने कार्यों में सुधार करती जाती है। उदाहरण के रूप में मोबाइल का वॉइस असिस्टेंट, गूगल मैप, ऑनलाइन चैटबोट, स्वचालित कारें, रोबोट, मेडिकल जांच प्रणाली, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि एआई के उदाहरण हैं। एआई का इतिहास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार नया नहीं है। प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसी मशीनों की कल्पना करता था जो स्वयं कार्य कर सके, परंतु आधुनिक एआई की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। प्रारंभिक विकास 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन टूरिंग ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती है। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं। 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों के निर्माण पर कार्य शुरू किया जो स्वयं सीख सके। आधुनिक युग में एआई, इंटरनेट, बड़े डेटा, तेज कंप्यूटर और मशीनी लर्निंग तकनीक के विकास में एआई को नई गति दी। आज एआई केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि आम लोगों के मोबाइल फोन और दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एआई के प्रमुख प्रकार। नैरो एआई, सीमित एआई, इसे केवल विशेष कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, चैटबोट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। आज अधिकांश एआई इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जनरल एआई, तीसरा सुपर एआई। जनरल एआई यह ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मानव की हर तरह हर प्रकार का कार्य कर सके। वर्तमान में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। सुपर एआई यह भविष्य की कल्पना है जिसमें मशीनें मानव से भी अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं। इस विषय पर वैज्ञानिक और दार्शनिक लगातार चर्चा कर रहे हैं। एआई वर्तमान समय में कैसे उपयोग हो रहा है। आज एआई का उपयोग संसार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने क्रांति ला दी है। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम, भाषा अनुवाद, परीक्षा प्रणाली इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई, चिकित्सा विज्ञान एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, जैसे रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी, दवा निर्माण, स्वास्थ्य निगरानी इत्यादि। न्याय और कानून के क्षेत्र में एआई, आज एआई कानून और न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, न्यायिक विश्लेषण इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में एआई, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में एआई किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जैसे मौसम की जानकारी, फसल रोग पहचान, स्मार्ट सिंचाई इत्यादि। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एआई व्यापारिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली बन चुका है, जैसे ग्राहक सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग, उत्पादन प्रणाली इत्यादि। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आज बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। ऑनलाइन लेन देन सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, निवेश विश्लेषण इत्यादि। परिवहन और सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, ड्राइवरलेस कार, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में एआई मनोरंजन उद्योग में भी क्रांति ला रहा है। फोटो और वीडियो एडिटिंग, संगीत निर्माण, फिल्म विशेष प्रभाव, सोशल मीडिया, यूट्यूब सुझाव प्रणाली, ये सब एआई के माध्यम से संचालित होते रहे हैं। मानव जीवन पर एआई का सकारात्मक प्रभाव, समय की बचत, कार्य की सटीकता, जीवन को सरल बनाना, नई खोज का विकास, दिव्यांग लोगों के लिए सहायता। एआई

इस वार्ता के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं प्रकृति के विषय में। प्रकृति हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसे हर वर्ष मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन रोकने के लिए टिकाऊ जीवन शैली अपनाना कितना जरूरी है। जैव विविधता की रक्षा, वर्तमान में प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण हजारों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक स्वस्थ पर्यावरण ही एक स्थिर और समृद्ध समाज की नींव रखता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके प्रकृति को बचाने में बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। जैसे क्या है कि पानी की बचत, ब्रश करते समय नल बंद करना और वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना अति आवश्यक है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना और कचरे को रिसाइकलन करना। ऊर्जा का संरक्षण, कमरे से बाहर जाते समय बिजली के उपकरण और लाइटें बंद कर दें। अधिक से अधिक पेड़ लगाना। मृदा अपरदन को रोकने और स्वच्छ हवा के लिए वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। डिजिटल माध्यम का उपयोग, कागजों का इस्तेमाल कम करें। वनों की कटाई को रोकने के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होगा। ज़्यादातर डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें, कागज़ का कम उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करता है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भी लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हम सबको चाहिए कि पर्यावरण को हम बचाएं। इसके लिए छोटे स्तर पर भी हम यह कार्य कर सकते हैं। जल का उपयोग कम करें, जितना आवश्यक हो उतना ही करें। आप अगर बाथरूम में हैं तो टब में पानी भर लें, उसे अपना है। ज़्यादा देर तक झरनों का उपयोग ना करें। कपड़ा धोते वक्त जो पानी बच जाए उसका और भी उपयोग कर सकते हैं, घर की सफाई के लिए भी कर सकते हैं। अपने आसपास वृक्ष, अगर आपके चार दीवारी के अंदर थोड़ा भी बहुत अगर जगह है तो उसमें वृक्ष लगा सकते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन को हम रोकें। तो ये तो हो गई चर्चा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा प्रादेशिक मुख्य समाचार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चास प्रखंड में 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और जरीडीह क्षेत्र में 99.84%, बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र में 85.63% तथा चास नगर निगम क्षेत्र में 84.96% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। गुमला समाहरणालय में नीति आयोग के नीति तारा उपकरण के प्रभावी उपयोग पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आकांक्षी जिला और

0: डुमरी आकांक्षी प्रखंड के विकास संकेतकों की निगरानी, डेटा विश्लेषण तथा साक्ष्य आधारित योजना निर्माण की जानकारी दी गई। रामगढ़ सदर अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चियों की माताओं को सम्मानित कर किट वितरित की गई। अधिकारियों ने बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक के साथ भारत के लिए दोहरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण।

0: सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है मुर्गियों की आवास और उनका रख रखाव।
1: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम लोग बातें करेंगे स्वरोजगार की, और स्वरोजगार में बातें होंगी मुर्गी पालन की। विशेषकर हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बहन मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकियां आप नहीं अपनाते हुए वे देख रेख नहीं कर पाते, जिससे लगाई गई पूंजी का कई गुना लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। अतः मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए जिससे बेहतर मुनाफा हमें प्राप्त हो सके, मुर्गियों के की जो उत्पादन और क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे ग्रामीण भाई बहन किस प्रकार मुर्गियां की देख रेख करें सर, किस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता जो उसमें बढ़ोतरी लाएं, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी जाए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वैज्ञानिक रूप से करें कि उनकी आजीविका बेहतर हो सके। जब उनका उत्पादन अधिक होगा तभी उनकी आजीविका बेहतर हो सकती है। इस दिशा में मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मुर्गी पालक हैं, अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके आवास पर ध्यान देना चाहिए। जब भी मुर्गियों के लिए आवास बनाने लगें, मुर्गी घर बनाना शुरू करें, तो आप उसे ये देख लें कि वो रोड्स के नज़दीक है कि नहीं। दूसरा, उसमें नीचे बरसात में ज़मीन में जो फर्श है वो उसमें सीलन नहीं हो, थोड़ी सी ऊँची जगह पर बनाएँ। दूसरा, ये ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में छज्जा होता है वो 4 फीट से 9 फीट रखें, ताकि बरसात का जो पानी है वो मुर्गी घर के अंदर न जाए। और ध्यान रखना चाहिए कि बीच में जो है उसकी ऊंचाई 14 फीट के आसपास रखें।

0: और साइड वाला दीवार है उसको 9 फीट रखें, और जब भी आप सेट बना रहे हो तो मुर्गियों के एक मुर्गी के लिए कम से कम 1 से 1.5 वर्ग फीट की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए आपको 400 चूजे रखने हैं तो आपको 600 स्क्वायर फीट का सेट होना चाहिए। तो इस सेट में आप 30 फीट लंबा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बना सकते हैं और 20 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा करेंगे, तो इससे 600 स्क्वायर फीट का आपका मुर्गी फार्म बन जाएगा, जिसमें कि आप 400 अंडे देने वाली मुर्गी, जिसको कि अंडे देने वाली मुर्गी को हम लोग लेयर बर्ड कहते हैं
1: जी।
0: तो आप इस 400 अंडे देने वाली के लिए आप 600 स्क्वायर फीट का घर बनाएंगे। लेकिन इसी तरह से कोई हमारे मुर्गी पालक भाई चाहते हैं कि नहीं, हम अंडे पालन करने वाली मुर्गी नहीं रखें बल्कि इसके बजाय मांस वाली मुर्गियाँ रखें, तो वो 500 चूजे के लिए प्रति एक स्क्वायर फीट के हिसाब से 500 चूजों के लिए 500 स्क्वायर फीट का घर बनाना होगा। तो उसके लिए वो 20 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा पूरब से पश्चिम की ओर 500 स्क्वायर फीट का सेट बनाएं, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जब ऊंचाई अधिक रखने से क्या होता है, बीच में 14 फीट रखने और साइड वाले दीवार 9 फीट रखेंगे, मुर्गी घर के अंदर गर्मी बहुत पैदा नहीं होगी गर्मी के दिनों में। और जाड़े के दिनों में आप उसमें चूंकि जाली लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक देकर के हवा को रोक सकते हैं। अगर जाली आप नहीं लगाते हैं आवास में, तो चूंकि मुर्गियां जहां पर रहती हैं तो उनका लीटर है, मैंने जो हम हिंदी में कह सकते हैं उसका पेशाब और पैखाना दोनों एक साथ आता है, उसमें अमोनिया की बहुत मात्रा होती है, और अगर आप जाली नहीं देंगे तो ये अमोनिया की मात्रा अधिक होने से, ये भारी गैस है, उस स्थिति में मुर्गियों को बार बार अमोनिया लेने के कारण ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो मुर्गियाँ हाँफने लगती हैं। तो ऐसे में मुर्गियाँ जब हाँफने लगेंगी तो उनका उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाइयों को आवास बनाते समय इतना जरूर सुनिश्चित कर लें कि जहाँ भी आवास है वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा और बाजार की कितनी दूरी है, अगर इतना है तो आपका आवास सही है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप अगर मुर्गी पालन करने चल रहे हैं तो फिर हम हैं कि चूजा, तो ये चूजे दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप मांस के लिए मुर्गी पाल रहे हैं या अंडे देने के लिए, और तीसरा आपका विकल्प हो सकता है कि न मांस के लिए न अंडे के लिए बल्कि बीज का आप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पहले हम बात करें मांस वाली मुर्गी, अभी मांस वाली मुर्गियां चूंकि 25 दिन में अब 1 किलो के आसपास हो जा रही हैं और लोग 35 दिनों में उसे हटा दे रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी कर रहे हैं तो ब्रायलर का चूजा खरीदेंगे। इसी तरह से दूसरा हुआ अंडे देने वाली मुर्गियां, तो कुछ जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं वो अभी सोलोनी वगैरह हैं जो कि आपको 280 अंडे प्रतिवर्ष देंगी, ये मुर्गियाँ 4 महीने के बाद मतलब 5 महीने के आसपास ये अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो आपको अगले 1.5 साल तक अच्छे अंडे देती हैं, इसके बाद इनके अंडे का उत्पादन घटने लगती है, तो इन दोनों में आप डिसाइड कर लेंगे। तीसरा जो हमने कहा वो है कि आप वनराजा, वनरानी, कैरी निर्भीक, ये किस्म की जो आ रही हैं नस्लें, ये आपको लगभग 150 से लेकर 200 तक अंडे साल में देंगी, इन्हें आप थोड़ा बहुत आंगन में चरा भी सकते हैं और उससे इनको रख सकते हैं। अब आती है बात तीसरा, मुर्गियों को हम टीकाकरण कैसे करेंगे। तो टीकाकरण में है कि आपका मेरिस डिजीज की टीका जो है, जो बाजार से आप चूजा खरीदेंगे वो 1 दिन में ही वहाँ से कंपनी दे करके कहीं भेजती है।
1: अच्छा।
0: तो मेरिस बीमारी का टीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है रानीखेत, तो रानीखेत का टीका जो है सभी मुर्गियों को 3 से 4 दिन के अंदर आँख में या नाक में आपको एक एक बूंद पिला देना है, आँख या नाक में डालना है। इसके बाद आपको 21वां दिन जो है रानी खेत का, आप ये फोन हम लोग दे दिया है, अब इसके बाद हम लसोटा उसको जो है 21वां दिन पानी में घोल करके पिलाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके बाद जो है मांस वाली मुर्गियां, चूंकि इनके बाद ये रहती नहीं है तो इनमें तो वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अंडे देने वाली मुर्गी को रखा है तो आपको तीसरा जो रानी खेत का वैक्सीन है वो 2 महीने पर R2B वैक्सीन हर एक मुर्गी को, जो उसका पंख है उस के डीएनए में या मांस में, आप उसको एक एक इंजेक्शन आपको देंगे तो रानीखेत से बचाव होगा। दूसरा, मुर्गियों में एक मुर्गी चेचक होता है जिसमें कि आपको कलगी में आप देखेंगे कि दाने दाने उभर जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 महीने पर एक एक पंख को निकाल करके वहां पर दवा लगा दी जाती है।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से मुर्गियों का ये टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। इसके बाद आता है कि हम अगर चूजे लेके आते हैं तो हमें घर में क्या करना चाहिए। जैसे चूजा आने के पहले आप ये निश्चित रूप से कर लें कि जो आपका मुर्गी घर है उसमें नीचे जो है आप लकड़ी का बुरादा जो है या चावल का कोढ़ा है उससे 2 से 3 इंच तक उसको बिछा दें पूरी तरह से, और उसके बाद जो है वो पूरे घर को आप 2 तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं, चूना का पोचारा कर

0: सकते हैं, या फिर आप उसमें फॉर्मलिन मिला करके भी उपचार कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ एंटीसेप्टिक्स आती हैं, उन्हें आप कोहर्सोलिन TH नाम की, उसे आप 1 लीटर में 2 ml दवा मिला करके पूरा स्प्रे कर दीजिए दीवार पर, खिड़की पर, उसके जाली पर, ताकि वहाँ कोई और बीमारी ना हो। जब इतना हम कर लेते हैं, बायोसिक्योरिटीज कर लेते हैं, और दूसरी बात की सावधानी रखें कि जहाँ भी आप फार्म वाली मुर्गी रखें हैं वहाँ पर देसी मुर्गी ना रखें, क्योंकि देसी मुर्गियों में अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो वो आपके मुर्गियों को ग्रसित कर सकती हैं। जब आपके घर में चूजा आ गया है तो आप उसे आते के साथ चूजे को पेपर बिछा दें, पेपर के ऊपर में जो है मुर्गियों को और बी कॉम्प्लेक्स का सिरप या लीवर टॉनिक का सिरप आप 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml मिला करके जो मुर्गी का पिलाने का बर्तन है उसमें उसको दे दें। साथ में आप तुलसी के छोटे छोटे मुलायम पत्ते भी दे सकते हैं। इस तरह से जब आप एक दिन उसको, मुर्गियाँ जब भी अंडे देती हैं तो उनको 72 घंटे के बाद ही उनको भोजन देना होता है
1: जी।
0: तो आप उस 72 घंटे कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से देखने के बाद तब भोजन आप देना शुरू करें। ये भोजन देने में आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह का मुर्गियों का भोजन होता है। एक स्टार्टर हम लोग बोलते हैं जो हम लोग पहला दिन से 10वां दिन तक देते हैं, इसके बाद ग्रोवर देते हैं 10 से 20 दिनों तक, और 20 दिनों के बाद जो है हम लोग उसको फिनिशर राशन बोलते हैं, या आप लेयर मुर्गी में कहिएगा तो लेयर राशन कहलाएगा। पहला जो हम लोग उन्हें स्टार्टर देते हैं उसमें हमारा जो प्रोटीन का ये होता है वह लगभग 23 से 24% होता है, और प्री स्टार्टर में जो है 21 से 22% होता है, और फिनिशर में 19 से 20% प्रोटीन होता है। इसी तरह से इसमें एनर्जी जो है प्री स्टार्टर में 2900 किलो कैलोरी होगा, स्टार्टर में जो है 2950 किलो कैलोरी होगा, और फिनिशर में जो है 3000 किलो कैलोरी होता है
1: जी।
0: तो ये भोजन हो गए। इसके बाद हम जब मुर्गियों को लाते हैं तो मुर्गियां चूंकि जाड़े के दिनों में खास करके जब लाते हैं तो उन्हें मुर्गी उनके साथ नहीं होती तो उनको गर्मी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ब्रूडर व्यवस्था करते हैं। तो ब्रूडर में आप बल्ब जला करके देखना है आपको कि अगर आपका बल्ब का पावर सही है और 95 डिग्री फॉरेनहाइट अगर रूम का टेम्परेचर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि बल्ब लगाइए और ब्रूडर के घेरा बनाइए और घेरा बना करके देखिए कि अगर आपकी चूजे जो बच्चे हैं अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें ठंड लग रही है, तो आप पावर बढ़ा दीजिए। और अगर लगता है कि नहीं, जहाँ बल्ब जल रहा है उससे दूर दूर आपके चूजे जा रहे हैं, तो इसी स्थिति में आप बल्ब के पावर को कम कर दीजिए ताकि उनको लग रहा है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है तो किनारे भाग रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात की ये सावधानी रखने के लिए कि जाड़े के दिनों में थोड़ा पानी तो सभी दिनों सालों भर आपको साफ पानी पिलाना है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो कोशिश करिए कि 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो। गर्मी के दिनों में अगर बहुत गर्म पानी देंगे तब भी वो नहीं पिएगा, और जाड़े के दिनों में ठंडा पानी हो तब भी नहीं पिएगा, तो इसको टेम्परेचर को निश्चित रूप से मेंटेन करने की कोशिश करें। और गर्मी के दिनों में 2 बार पानी को बदलें, और जाड़े के दिनों में 1 बार पानी का बर्तन को साफ करके बदल दिया करें। इस तरह से मुर्गियों में 7 दिन पर ही सफाई का ये किया जाता है, ऐसे ब्रॉयलर मुर्गी में तो हम लोग 1 बार ही ये करते हैं सफाई जैसो, क्योंकि हम लोग का उस फार्मूला ये है कि ब्रॉयलर मुर्गी रखे हुए हैं तो आप एक साथ ही 600 के 600 मुर्गी को बेच दीजिए और फिर नया का नया पूरा डालिए। इसको ऑल इन ऑल आउट कहता है।
1: अच्छा।
0: इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर उसमें से कोई बीमारी है भी तो वो साथ बाहर जाएगी, और जो नई मुर्गी आएगी उसको हम सैनिटाइज करके करेंगे तो हमको दूसरी मुर्गियों में बीमारी नहीं फैलेगी। तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट जो है यही बेस्ट अभी माना जा रहा है। इस तरह से किसान भाई अगर करेंगे, और दूसरी बात आती है अंडे देने वाली मुर्गी, तो आप अंडे देने वाली मुर्गी को 4 महीने के बाद आप रखते हैं तो उसमें अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी रखते हैं, लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था दोनों मुर्गियों में ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रॉयलर मुर्गी है अगर उसे लाइट अब 14 घंटे देंगे तभी वो भोजन करेगी और जल्दी जल्दी अपना वजन गेन करेगी, बढ़ाएगी। इसी तरह से अंडे देने वाली मुर्गियों में भी अगर 14 घंटे का आप लाइट देते हैं तो उनका भोजन वो ज़्यादा लेंगे और उनके अंडे भी अच्छे आएंगे और अधिक मात्रा में उत्पादित होंगे। इसी तरह से
2: आप सुन रहे थे वेट वार्ता, विषय था मुर्गियों को रख रखाव। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं एक लोकगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इस लोकगीत के बाद हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ओल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें इस विषय पर। आइए जानते हैं ओल की वैज्ञानिक खेती।
1: तो उसे घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी जी।
2: और ये खाने के कभी कभी लोग किसान कहते हैं कि खाने में ये थोड़ा कम स्वादिष्ट लगता है और देसी ओल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बता दूं कि देसी ओल में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज इसका इस्तेमाल करते हैं और उतना ही इसमें इस्तेमाल करें तो ये भी स्वादिष्ट लगता है
1: जी।
2: तो ये रही खाने की बात। लगाने की विधि किसान भाई जान जाए कि इसका जो लगाने का विधि और समय, तो समय हमारा उपयुक्त है 15 मार्च के बाद। हम लोग जब गर्मी पड़ती है 15 मार्च से लेकर हम लोग मई तक गर्मी जब ज़्यादा खूब पड़ती है तो इसका लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। सिंचित अवस्था और असिंचित अवस्था, यानी सिंचाई की सुविधा है तो हम लोग इसको अप्रैल में, मई में लगा सकते हैं। अगर किसी किसान के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वो जून और जुलाई के महीने में जब वर्षा आ जाती है तब इसकी ओल की खेती कर सकते हैं। तो दोनों स्थिति में ये कर सकते हैं। तो हम लोग लगाने की विधि की चर्चा कर लें पहले किसान भाई, कि जब भी ओल की खेती करें तो हम लोग गड्ढा करते हैं। तो गड्ढा की जो है गहराई और चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर के आसपास, माने 1.25 फीट के आसपास में हम लोग गड्ढा करते हैं और जो है उसमें मिट्टी, कंपोस्ट, मान का खाद डाल के हम लोग उसको भरते हैं। लेकिन भरने के पहले उसको बीज उपचार जरूर कर लें।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जब किसी चीज़ों को हम लोग गजेंद्र ओल की बात करते हैं तो ये कोई 2 किलो का होता है, कोई 3 किलो का होता है, कोई 1 केजी का होता है। तो हम लोग कितना बड़ा टुकड़ा को लगाएं।
1: अच्छा।
2: तो हम लोग जो है 500 ग्राम के आसपास, अगर हम लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से ओल की खेती करते हैं तो 500 ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए। कैसे काटे किसान भाई, तो देखे होंगे ओल जब रहता है तो उसके बीच में गड्ढा होता है
1: जी।
2: तो ऐसे काटें जैसे

0: 1 किलो का वोल है तो आप काटते हैं तो बीच में अगर काटते हैं तो आधा आधा केजी का हो जाए, लेकिन
1: अच्छा
0: गड्ढा वाला हिस्सा दोनों हिस्सा में रहना चाहिए,
1: अच्छा
0: वहीं से
1: अच्छा
0: आंख निकलता है, वहीं से वो निकलता है वोल, इसलिए
1: जी
0: गड्ढा का हिस्सा। अगर हम लोग 2 किलो का वोल है तो हम लोग उसमें एक प्लस तरह का चाकू लगाएंगे बड़ा वाला, तो 4 टुकड़ा में काट देंगे, एक बार चाकू सीधा एक बार हम लोग हॉरिजेंटल लगाएंगे, और लेकिन चारों हिस्सा में वो गड्ढा वाला हिस्सा
1: होना चाहिए।
0: अवश्य रहे। जब किसी चीजों को हम लोग काट देते हैं तो बीज उपचार करना अवश्य हो जाता है। तो
1: जी
0: हम लोग किसी भी फफूंद नाशक दवा कर्बंडाजिम का इस्तेमाल करेंगे और टब रखेंगे, उसमें 15 लीटर पानी रखेंगे और 30 ग्राम कर्बंडाजिम पाउडर को डाल देंगे।
1: अच्छा
0: तो 30 ग्राम डाल के घोल लिए और सभी ओल को जो है हम लोग डुबा डुबा के उसमें निकाल लेंगे और 5 मिनट रख के निकाल देंगे। अब ओल का बीज जो है उजला हो जाएगा, यानी बीज उपचार हो गया, अब उसमें सड़ने की संभावना कम हो
1: कम
0: गई।
1: रहेगी जी।
0: तो हम लोग जो है देखते हैं कि जहाँ पर जो पोर्शन गड्ढा कर दिए थे, गड्ढा करने के बाद किसान भाई उसकी मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, उसमें मान का खाद और उर्वरक जो हम लोग अभी बात करेंगे उसकी चर्चा भी करेंगे, तो उसको हम लोग डाल के गड्ढे को भर देते हैं
1: अच्छा
0: और फिर हम लोग 6 इंच में ऊपर से गड्ढा करके उस ओल को नीचे डाल देते हैं और कटा वाला पोर्शन जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखेंगे
1: जी जी
0: और
1: जी
0: 1 इंच मिट्टी से ढक देंगे,
1: अच्छा
0: और इस तरह से ढकने के बाद हम लोग उसका पटवन करते हैं।
1: अच्छा
0: अब ये देखिएगा किसान भाई, जब हम लोग इसकी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, हम लोग अगर हम लोग सिर्फ ओल की खेती करते हैं तो हम लोग 2-2 फीट की दूरी पर एक एक पौधों को लगाते हैं
1: अच्छा
0: और लाइन से लाइन की दूरी भी हम लोग 2 फीट रखते हैं।
1: जी
0: अगर किसान भाई अगर आप उसमें इंटर क्रॉप के रूप में भिंडी हो या फ्रेंच बीन लगाना चाहते हैं तो आप लोग 2-2 लाइन उसमें लगा सकते हैं, तब ओल की दूरी एक ओल से दूसरे ओल की दूरी 2.5 फीट रखेंगे, यानी
1: अच्छा
0: 6 इंच हम लोग बढ़ा देते हैं
1: जी
0: और 2 लाइन उसमें हम लोग भिंडी और वो लगाते हैं, क्योंकि जब
1: अच्छा
0: इसका हम लोग पटवन करेंगे अप्रैल महीने में लगा के, और उस समय भिंडी का सीजन भी होता है,
1: जी
0: फ्रेंच बीन का सीजन होता है, लत वाली सब्जियों को नहीं लगाएंगे, नहीं
1: अच्छा
0: तो फिर ओल पर चढ़
1: चढ़
0: जाएगा,
1: जाएगा
0: तो
1: जी
0: हम लोग लत वाली सब्जियों को नहीं लगाएंगे, और उसी पटवन में आपका ओल भी होगा और उसी पटवन में आपका भिंडी और ये भी, यानी ओल निकालने का लगाने का खर्च भी हम इंटर क्रॉप के रूप में इन सब्जियों से निकाल लेते
1: जी
0: हैं।
1: बात चूंकि इंटरक्रॉप की चल रही है सर, तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जहां बड़े बड़े पेड़ हैं तो वहां हमारे किसान भाई इसे लगा सकते हैं। नहीं
0: जहां छायेदार चीज है वहां पर सिर्फ ओल की खेती करेंगे, वहां पर
1: अच्छा
0: इंटरक्रॉप नहीं होगा। जहां पर हम लोग खुले जगहों में लगा रहे हैं वहां पर इंटरक्रॉप की बात करते हैं ज्यादातर अमूमन किसान, चूंकि यह है बगीचा में भी हो सकता है हल्दी और अदरक की तरह,
1: अच्छा
0: इसलिए हम लोगों ने उसकी चर्चा की अगर लगाते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग इंटर क्रॉप के रूप में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन
1: अच्छा
0: इसमें जो है हम लोग
1: लगा
0: बाहर में
1: सकते
0: लगा सकते हैं।
1: हैं जी
0: तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरह से सिंचित अवस्था में कितनी पौधों से दूरी होना चाहिए। अब हम लोग बीज दर की बात कर लें कि अगर हमें 1 हेक्टेयर लगाना है तो 140 क्विंटल बीज लगेगा,
1: जी
0: और अगर हमें 1 एकड़ लगाना है तो 55 क्विंटल बीज लगेगा,
1: जी
0: या किसान भाई आप अपनी भाषा में बात करें तो 1 कट्ठे में 2 क्विंटल लगेगा, यानी
1: अच्छा
0: 1.25 डिसमिल में 2 क्विंटल बीज लगेगा, और 60 रुपया प्रति किलो की दर से 12 रुपया आपको 1 कट्ठे में बीज लगेगा।
1: बीज लगेगा जी
0: जब इसकी हम लोग 8 महीना हो जाए किसान भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दुर्गा पूजा का सीजन आ जाएगा, और हम लोग दुर्गा पूजा के में ओल की खेती, ओल का जो है खाना आरंभ कर देते हैं
1: जी
0: और उस समय जो है हम लोग गड्ढा खोदकर
1: निकाल
0: ओल को
1: सकते हैं
0: निकाल लेते हैं।
1: जी
0: तो अब देखते हैं कि एक ओल जो हमने 500 ग्राम का लगाया था वो अब जो है उससे जो है
1: 2 केजी के आसपास
0: हाँ
1: हो गया होगा।
0: उससे आपका जो है 3.5 गुना ज्यादा हो गया है।
1: वाह
0: तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर हम 2 क्विंटल बीज लगाए थे तो अब आपके पास 7 क्विंटल ओल कम से कम एक
1: प्राप्त
0: कट्ठे में हो गया, यानी कि हम लोग जो है इसकी लागत खर्चा की बात करें तो लागत खर्च जो है 1 एकड़ में हम जो जो लोग 3.5 लाख से 4 लाख रुपया 1 एकड़ में खर्च लगेगा, बीज का खर्च, कंपोस्ट का खर्च, सिंचाई का खर्च, अन्य खर्च खेती में जो लगता है, और उसका जो शुद्ध लाभ हमको प्राप्त होगा वो आपको जो है 6 लाख रुपया प्रति एकड़, यानी लगाने का खर्च 4 लाख काट दिया जाए तो हमको 6 लाख रुपया शुद्ध आमदनी होती है, ऐसे 10 लाख आमदनी हुई और 4 लाख को हम लोग खर्च को काटें तो
1: जी
0: 10 लाख रुपया प्रति एकड़ की आमदनी होगी,
1: जी जी
0: जिसमें कि शुद्ध लाभ जो है 6 लाख
1: लाख
0: रुपया प्रति एकड़ किसान
1: जी
0: भाई होगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किसान भाई आप देखते हो कि इसमें रोग और व्याधि का भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, अमूमन एक पीला होने वाला जो होता है, ओल की पत्तियां डंठल पीला हो जाता है तो फफूंद

0: दवा का हम लोग स्प्रे कर देते हैं, और उर्वरक को हम लोग लगाने के समय एनपीके का उर्वरक जो इस्तेमाल करते हैं 100-60-80,
1: जी
0: यानी कि 100-60-80 के रेशियो में हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं, डीएपी और पोटास और
1: अच्छा
0: नत्रजन,
1: अच्छा
0: और 30 दिनों के बाद एक बार निकाई गुड़ाई करते हैं और 60 दिनों के बाद निकाई गुड़ाई करते हैं। दोनों के बाद निकाई गुड़ाई करने के बाद हम लोग पुनः उर्वरक का प्रयोग
1: इस्तेमाल
0: करते हैं, और
1: करें।
0: सिंचाई की जो सुविधा है हम लोग जून तक सिंचाई देते हैं, और जून के बाद वर्षा आरंभ हो जाती है, तो जून से लेकर हमारा अक्टूबर अगस्त तक हम लोग उसकी जो है सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर के वर्षा से होती है।
1: होती है।
0: किसान भाई कभी भी ओल की खेती करने के बाद, ओल निकालने के बाद तुरंत बाजार में बेच दें, ये देखें कि नहीं दे, बेचने से क्या होता है कि जो आप अगर निकाल के अपने घरों में रख लेते हैं तो फिर मॉइस्चर लॉस हो जाता है, यानी कि 2 किलो का वो जो है घटकर 1-2 महीने के बाद में 1.5 किलो का हो
1: डेढ़ किलो
0: जाएगा,
1: का हो
0: तो
1: जाएगा।
0: आपको नुकसान हो सकता है। अगर किसी को बीज के रूप में रखना है किसान भाई, तो वो उसी समय फरवरी के महीने में उसको निकालेंगे और अप्रैल के महीने में पुनः लगा देंगे,
1: जी
0: यानी अगर बीज के रूप में रखना है हमको तो हम लोग बीज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम लोग बीज में बेच देते हैं। तो अगर आप 8 महीने की फसल है, 6 महीने में आप, 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा निकाल के आप उसकी बिक्री कर सकते हैं,
1: जी
0: जैसा रेट रहता है। अब बाजार में देखते हैं वो जो है 80 रुपया के बात हम लोग करते हैं, अभी तो हम लोग 60 रुपया के हिसाब से जोड़ा
1: जी
0: किसानों को, तो और लाभ ज्यादा बढ़ सकता है
1: विशेषकर दुर्गा पूजा में इसकी मांग ज्यादा होगी।
0: मान, और ये निकलता है दुर्गा पूजा के आसपास। तो आप लोग अगर हल्की मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, आलू वाली खेती जिस तरह करते हैं अच्छी जुताई करके, आप किसान भाई मेढ़ों पे भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो मेढ़ पे लगाने से क्या होता है कि उसका जो है गड्ढे के गड्ढा खोदते हैं तो उसमें फैलने का चांसेस, मिट्टी ढकने का चांसेस बढ़ जाता है,
1: बढ़
0: जिससे
1: जाता है। जी
0: चलते हम लोग उसका उत्पादन और बढ़ जाता
1: वाह।
0: है। और अमूमन इसको जानवर नहीं खाता है, तो ये होती है कि यहाँ पर जानवर की चरने की समस्या है, तो जानवर से भी हम लोग प्रोटेक्शन हो जाता है
1: प्रोटेक्शन
0: अगर
1: मिलता
0: ओल
1: है।
0: की
1: जी
0: खेती करते हैं
1: अच्छा,
0: तो।
1: बात चूंकि जून तक आप बोल रहे थे सिंचाई के लिए, तो जून तक में कैसे किस कैसे देखते हुए हमारे किसान भाई सिंचाई
0: किसान भाई
1: करेंगे?
0: हाँ एक बार ध्यान देंगे कि हम लोग पहली बार में जब है ओल को आपने मिट्टी में दबा दिया तो 3 पटवन 7-7 दिन के बाद करेंगे, तब 20 से 25 दिनों के बाद बस करेल की तरह ओल निकलना शुरू हो जाता है,
1: अच्छा
0: घबराएं नहीं तब तक, 25 दिनों के बाद ओल निकलता है, 20 दिनों के बाद निकलता है।
1: जी
0: तो कभी कभी चिंतित हो जाते हैं किसान की ओल नहीं निकल रहा है, और उसके बाद में हम लोग पटवन, जिसके पास सिंचाई की सुविधा है वही किसान अभी करेंगे, और जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो आप जो है जून जुलाई में खेती करेंगे।
1: जी
2: ओल की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। इसी भेंटवार्ता के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सा गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाड़ी में। जी हाँ किसान भाइयों, हम बहुत सारी फसलों की बातें आपसे करते हैं, ढेर सारी योजनाओं की बात करते हैं, तरह तरह की बातें किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे साझा करते रहते हैं। आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। जी हाँ, जिसकी आज आवश्यकता है और सरकार इस पर बहुत बल दे रही है ताकि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके वो देश को स्वस्थ रख सकें और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकें। और मोटे अनाजों में कौन सी फसलें मुख्यतः शामिल हैं और इसकी वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें, इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारी बातें हैं मोटे अनाजों से संबंधित। इस विषय पे संबंधित आज हम विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों में किसको शामिल कर सकते हैं।
1: किसान भाई, मोटे अनाज का मतलब आप लोग जान जाए कि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल बाजरा की चार चीजें आती है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे कोदो, सावा, आप लोग पलामू, लातेहार, गढ़वा के आसपास के किसान हैं तो ये जानते होंगे कि पहले लोग जो अनाज करते थे तो सावा, कोदो, ये सब चीजों की भी खेती करते थे। और ज्वार जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप लोग जिनोर भी बोलते हैं। तो जिनोर, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल मिलेट, इसके जो हम अब इसकी चर्चा करते हैं कि जो ये फसलें जो होती हैं, इस फसल में सभी जगह इसकी खेती की जा सकती है और खास करके इस फसल में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन हम लोग बार बार सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम हमारी पलामू की कम वर्षा हो रही है, ज़्यादा तापमान हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा, इसी को जलवायु परिवर्तन करते हैं। और ये जलवायु परिवर्तन में आप ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, इस सब की खेती बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं और इसकी जो है पानी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, कम पानी में ये फसलें होती है। और इसके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए। आप जब देखते हैं टाण वाली मिट्टी जिसमें बहुत अच्छा उपजाऊ नहीं है, उस सब चीजों के लिए आप जो है ज्वार बाजरा की खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त है। और इसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन कम भी होता है, इस फसल में और फसलों की तुलना में उर्वरक की मात्रा कम लगती है तो हम उर्वरक से भी बच जाएंगे। और पूरे भारत वर्ष में मिलेट का जो ज्वार बाजरा का उत्पादन है इसमें हमारा जो देश है जो है ये जो है बहुत अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छे पहले नंबर पे आता है। और रागी, कुटकी और इस सब के क्षेत्रों में झारखंड का जो है छठा स्थान पूरे अपने राष्ट्र में है। तो हम लोग देखें भाई किसान भाई कि बाजरा के इसके फायदे क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। ये हमारा प्रस्ताव, भारत ऐसा देश है जो इसने विश्व पटल पर प्रस्ताव को रखा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की गई और 75 से 90 देशों ने इसकी जो है मनाने का इसमें हाँ में हाँ मिलाई भारत का और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हमारे लिए बहुत, भारत वर्ष के सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है कि इसको जो है 2023 को हम लोग बाजरा दिवस के बाजरा ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि किसान भाई आप देखते हैं कि हम लोग जो पहले तीन तरह के ग्रेन होते हैं, एक होता है कि निगेटिव ग्रेन, किसान भाई निगेटिव ग्रेन धान और चावल को बोलते हैं क्योंकि इससे खाने से आदमी बीमार पड़ते हैं
0: जी जी।
1: और कुछ ग्रेन होते हैं जो कि न्यूट्रल ग्रेन होते हैं जिसको खाने से जो है हम ना स्वस्थ भी ज्यादा रहते हैं और अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके खाने से अस्वस्थ नहीं होते, जैसे हमारा जो है ज्वार वगैरह हो गया। और रागी, मिलेट्स, ये सब जो है उसको पॉजिटिव ग्रेन बोलते हैं, यानी कि अगर पहले से हमें कोई रोग है तो उस रोग को ये सभी के आटा खाएंगे या इन सभी के प्रोडक्ट खाएंगे, दलिया खाएंगे तो आपको ये स्वस्थ भी रहेंगे और जो कोई पहले से भी बीमारी है उसको भी ठीक करने की क्षमता इन मोटे अनाजों में है। और हम लोग देखते हैं किसान भाई कि मोटे अनाजों को हम लोग गेहूं के आटा को पहले मानते थे कि ये अच्छा चीज है चावल की तुलना में, लेकिन गेहूं के आटा में ग्लूटीन नामक तत्व होने के चलते वो तुरंत हमारे शरीर में जैसे ही जाता है घुल जाता है और शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अमूमन आप लोग चीनिया रोग जिसको बोलते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इसके खाने से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शुगर की शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग अगर मोटे अनाज की बात जिसको कहते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, जो हमारे 70 के दशक से पहले लोग अपने खेतों में करते

0: थे, और बीच में गेहूं को हम लोग खाना शुरू कर दिए, क्योंकि गेहूं के अनाज में जो है ग्लूटीन होने के चलते थोड़ा सा हमारा मुलायम हो गया, रोटी खाने में मुलायम हो गया, तो हमारा जीभ का टेस्ट हमने देखा, लेकिन इससे बीमारियां हमारी बढ़ती गई। तो मैं यही कहूंगा कि ज्वार बाजरा का जो है इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 52 है, और गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, यानी कि हमारा जो है ज्वार बाजरा खाने से बहुत ज्यादा अच्छा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा है। तो किसान भाई इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, प्रचुर मात्रा में विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है, हम जो खाना खाते हैं हमारा पोषक तत्व जो है ये पोषण के लिए भारत सरकार ने इसको जो कहा है कि हम इसकी एमएसपी को बढ़ा दिए, एमएसपी भी भारत सरकार आपको जो खरीदेगी तो ये ज्यादा रेट पे खरीदेगी, और साथ साथ हमारे जो जितने भी राशन के दुकानों में या मिड डे मील स्कूलों में है, अपने माननीय प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार भी इस दिशा में हमारे कदम उठा रही है कि इसको वहां तक भी पहुंचाना, उपलब्ध कराने की बात हो रही है, इसके फायदे इतने हैं। तो हम लोगों को शुगर की बीमारी भी नहीं होगी, हम लोगों को एंटी ऑक्सीडेंट है, और हम एंटी कैंसरस है, इन सारे फायदों के हो रही है अगर हम मिलेट की खेती करते हैं, और हमने देखा कि ये सारी खेतियों के अगर हम करते हैं तो ये सारे हमको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने फायदेमंद है। अब रही हम लोग जो किसान भाई की जो पलामू ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की कम वर्षापात होती है, और कम वर्षापात में इन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, यानी कम पानी और खराब मिट्टी में ये हो जाती है, तो जरूरत है इन फसलों की करने की। जैसे कि हम लोग ज्वार की अगर खेती करते हैं किसान भाई खरीफ के मौसम में, तो ज्वार के साथ अगर अरहर दे देते हैं कितनों पलामू में, पिछले बार देखिए धान का रोपा आप लोग के यहाँ 5% पूरे पलामू में गढ़वा में हुआ, यानी कि हम लोग पानी के अभाव में धान की खेती नहीं कर पाए, जिससे हमारा मनुष्य का तो अनाज नहीं पूर्ति हुआ और जानवरों का चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसमें दोनों चीजों में क्या है कि आपको चारा भी बहुत मिलेगा जानवरों के लिए और अनाज भी मिलेगा। तो ज्वार की अगर खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो हम लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा फायदे है, 110 से 115 दिन की फसल है, और इसका बीज दर जो है ये 12 kg प्रति हेक्टेयर, यानी 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में लगाएंगे, अपलैंड में टाड़ भूमि में जिस तरह आप मक्का को लगाते हैं, तो इस मक्के को लगा के आप करेंगे तो हमको जो है ज्वार की खेती जिसको जिनोर भी आप बोलते हैं, तो इसे घबराना नहीं है कि हमको जिनोर है, और इसमें उर्वरक की भी जो कम मात्रा लगती है 60-40-20 की रहती है, तो 110 से 115 दिन की है। और इससे सबसे खास बात यह था कि किसान भाई इससे जो चारा जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये अनाज के साथ चारा भी हमको मिलता है।
1: किस्में क्या होंगी
0: इसके? 20 से, हाँ इसके किस्में है, CSB 17 है, CSB 20 है, SG 998 है, और CO 29 जो है ये चारे के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है, ये क्षेत्र होना निश्चित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी कि इसके खेती जो है अरहर के साथ भी आप करते हैं, अरहर और ज्वार के साथ में एक लाइन अरहर एक लाइन ज्वार या दो लाइन अरहर दो लाइन ज्वार, तो आपको क्या होगा किसी विषम परिस्थितियों में अगर खूब पानी नहीं पानी यहाँ पड़ा तो आपकी ज्वार की फसल होना निश्चित है और अरहर की फसल होना निश्चित है। अगर अगर हम लोग जो है ज्वार अगर फसल हो गए तो कम से कम हम भूखे नहीं मरेंगे, ज्वार की आटा खाएंगे, तो आप इसमें रोग और व्याधियां भी कम लगती है। तो हम लोग किसान भाई इसकी खेती को हम लोग जो है चारे के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे किसान भाई इसकी ज्वार की जब भी कटाई करेंगे तो 45 दिन के अंदर किसानों को चारा के रूप में नहीं खिलाना है, यानी जानवरों को 45 दिनों के बाद खिलाएं, या फिर अगर आप पटवन सुविधा हो रही है बारिश हो रही है अच्छी तो फिर आप खिला सकते हैं, नहीं तो इसमें एक जहरीला तत्व भी रहता है जो कि पानी की कमी के चलते ACN का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको सावधान करते हैं कि 45 दिनों के बाद ही चारे के रूप में इसको काट के आप जानवरों को खिलाएं, और अगर हम लोग अनाज के रूप में लेते हैं तो अनाज के रूप में ये जो फसलें हैं 25 से 30 क्विंटल हमको जो है ज्वार की पैदावार प्रति हेक्टेयर होगी। तो आप ज्वार की खेती, और सरकार जब इस पर आपको MSP ज़्यादा दे रही है, खरीदने का वादा दे रही है, राशन के दुकानदारों में सप्लाई करने की बात कर रही है, तो हम लोग ज्वार की खेती करके भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करते
0: हैं? हाँ किसान भाई, अभी मई का महीना हमारा जो चल रहा है, अब कोई किसान अगर गर्मा जुताई नहीं किए हैं तो आप अपने खेतों में गर्मा जुताई कर दें। सबसे उपयुक्त समय ये होता है कि अगर गर्मी के दिनों में अप्रैल महीना में देखे होंगे कि बारिश कुछ हुई थी, तो जस्ट बारिश खत्म होने के बाद अपने खेतों में जुताई कर दें। अगर गर्मा जुताई कर देते हैं तो कीट वगैरह का प्रकोप सब खत्म हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद अगर खेतों में थोड़ा जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे ही जून जुलाई के महीना आएंगे, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसका उपयुक्त समय लगाने का होता है, तो आप इसके जो है लगा सकते हैं, और घास निकालने के लिए हम लोग एट्राजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर ज़्यादा हमारे

पास में घास की समस्या आती है। तो ये सारी फसलों को अगर करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम लोग करते हैं। तो हम यही सलाह देते हैं कि पलामू में पहले ज्वार बाजरा मोटे अनाज, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्य लाभों के साथ में तो आप लोग जरूर ज्वार बाजरा की खेती की

0: CSB-17 और CSB-20 ये जो प्रभेद जो है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से अगले वर्ष, इस साल तो नहीं, अगले वर्ष उपलब्ध होगा। आप बड़े पैमाने पर यहाँ से अच्छे बीजों को लेकर आप अपने यहाँ खेती कर सकते हैं
1: जी। और इस प्रकार से हमें जो उम्मीद है कि हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करेंगे तो जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है निश्चित रूप से वो भरपूर लाभ कमाएंगे।
0: हाँ
1: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ किसान भाई बहन, कार्यक्रम में अब आइए हम अरहर और तिल में किस प्रकार प्रबंधन करें इस विषय पर की गई भेंटवार्ता हम सुनते हैं। विशेषज्ञ है डॉक्टर अखिलेश शाह, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी हाँ किसान बंधु, चूँकि हमारे बहुत से ऐसे ग्रामीण भाई बहन हैं जो अरहर और तिल की बृहद पैमाने पर खेती करते हैं।
2: उसका रकबा बढ़ के लगभग 24-25 में दुगना हो गया है।
1: अच्छा।
2: लगभग 5200 हेक्टेयर हो गया है। अच्छा। लेकिन समस्या कहाँ है कि आपका प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि प्रति एकड़ में आप कितना उपज किए, वो जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत कम है। उसके अलावे जो हमारा झारखंड राज्य का जो औसत उत्पादकता उससे भी कम है इस एरिया का।
1: अच्छा।
2: लगभग जो है 300 केजी के आसपास है प्रति हेक्टेयर।
1: अच्छा।
2: जबकि हमारा जो है झारखंड राज्य में जो है लगभग 400 केजी के आसपास है।
1: वाह।
2: तो इस दिशा में आप देखेंगे किसान भाइयों कि हम लोग उत्पादकता के दृष्टि में पीछे हैं।
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारा जो है रकबा बहुत ज़्यादा है। ये पूरा एरिया का जो झारखंड का ले लीजिएगा तो लगभग 70% रकबा जो है हमारा पलामू रीजन में है।
1: अच्छा।
2: तो संभावना बहुत है, लगा भी रहे किसान, लेकिन जो हमको उपज होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसमें अमूमन हम देखते हैं कि खरपतवार इसमें भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका उत्पादन घटाने में और बढ़ाने में।
1: अच्छा।
2: यदि समय पर इसमें आपका वीडिसाइड का प्रयोग हो, खरपतवार का
1: नियंत्रण
2: हो, तो आप उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज होता है बीज।
1: अच्छा।
2: देखिए किसान भाइयों, अक्सर कोई भी प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, तो किसानों को बताते हैं कि जैसे मजबूत घर के लिए आपका नींव मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप ऊपर में 2-4 मंजिला खड़ा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: यदि नींव कमज़ोर रहेगी तो आप कितना ऊंचा मकान बना लिए टिकाऊ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है बीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, सबसे प्राइमरी जो बोलते हैं वही है। यदि आपका बेस कमज़ोर रहेगा तो आगे की बात नहीं हो पाएगी। तो बीज का अच्छा होना और गुणवत्तापूर्ण होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक पुरानी ही वेराइटी है लेकिन अभी भी प्रचलन में है, हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी अभी वो बिरसा काके में जो अवस्थित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में भी इस बार हम लोग करीब हैं वहाँ पर काके सफ़ेद, उसका तिल का जो वेराइटी है वो हम लोग के पास है, और उसका इस बार भी हम लोग उपयोग करेंगे प्रयोग में भी, और कुछ रकबा बढ़ाएंगे तिलहन उत्पादन के लिए।
1: अच्छा।
2: तो इसमें आपको देखना है कि बीज सबसे पहले आप उसी को अपने इकट्ठा करें, क्योंकि खेत आप सोचिएगा कि बारिश होगी इसके बाद हम अपना बीज के लिए दौड़ेंगे, तो वैसे ही स्थिति में क्या होता है, आनन फानन में यदि अच्छा बीज नहीं मिलता है तो जो मजबूरी में दुकान में उपलब्ध है वही किसान भाई लेते हैं, जिसके चलते जो है वो ठगे जाते हैं
1: जी।
2: बहुत बार समस्या आती है कि उसमें अंकुरण नहीं हुआ,
1: नहीं हो पाता है।
2: तो ऐसे स्थिति में किसान भाई अब पहले से तैयार रहें, चूँकि अब समय हो चुका है खरीफ का, खेती का, तो आप जो है उसमें जो भी बीज आपको लेना है, चाहे धान की बात करें या अरहर की बात करें या
1: तिल
2: की बात करें, तो वो अच्छा बीज लें। दूसरी चीज़ किसान भाई, महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि जो अभी हमने बताया कि तिल में भी आपको वीडिसाइड का

0: करना चाहिए। उसमें जो पहले मैंने बताया पिंडी मिथिलीन जो अरहर की विडिसाइड के लिए उपयोग होता है
1: जी,
0: तो इसमें भी उसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: या करीब 10 मान लीजिए कोई किसान में चुक गए नहीं डाल पाए तो वो जो है करीब 10 से 15 दिन के बाद भी एक दवा आती है इमेजाथाइपर है या किजलफोप है तो उसका भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत में करेंगे जो पेंडी मिथिलीन का मैंने पहले भी बताया था अरहर
1: की ज़्यादा बेहतर
0: तो ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल है कि जैसा प्रिडिक्शन है अनुमान है संभावना व्यक्त किया गया है तो किसान भाइयों के लिए मेरा सलाह रहेगा कि जो आप मध्यम जमीन में धान की खेती करते हैं किसान भाइयों उसमें भी आप अरहर की खेती के लिए तैयार रहे। उसमें आपको एक थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि मेड़ को जो है ना जो रीज एंड फार्म मेथड हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा जो है कम से कम 30-30 सेंटीमीटर पर रीज बना करके मैंने थोड़ा सा दोनों तरफ से मिट्टी को उठा करके हम लोग के यहाँ चूँकि वो ट्रैक्टर चालित मशीन है तो उसी से हम लोग चला कर रीज एंड फार्म बना लेते हैं। रीज मतलब ऊंचा कर देना
1: जी जी।
0: तो ऐसे स्थिति में किसान भाइयों बोलिएगा कि क्यों हम करेंगे तो इसीलिए कि मान लीजिए प्रेडिक्शन है ज़्यादा बारिश हो गई अगस्त में या सितंबर में तो फ्लैट रहेगा समतल में अति मध्यम जमीन चूँकि धान का खेत है तो मध्यम जमीन में करेंगे। यदि ज़्यादा बारिश हो गई तो आपका जो है वो फसल बर्बाद होगा या वो जो सूख जाएगा जो भी पौधा होगा
1: जी।
0: यदि मान लीजिए बीज डाले और उसी समय ज़्यादा बारिश हो गई
1: तो
0: ऐसी स्थिति में आपका जो है बीज जो खराब हो जाएगा। और यदि आपका एक बीता का या आधा उंगली का जो फसल भी हो गया है पौधा हो गया है तो उसको भी नुकसान पहुँचेगा चूँकि पानी जहाँ जमेगा आपका अरहर का जो फसल जो है बर्बाद होगा ही। तो इसी से बचाव के लिए तो रीज का हम लोगों ने सलाह देता है कि भाई रीज एंड फार्म मेथड से ही आप मध्यम जमीन जो धान वाली है उसमें खेती करेंगे। चूँकि 2024 में भी आपको याद होगा किसान भाइयों कि जुलाई में बारिश नहीं हुई
1: जी।
0: हम लोग भी उस स्थिति से वाकिफ है और उसमें हम लोग सफ़र भी कर रहे थे हमारा बिचड़ा बहुत बर्बाद हुआ था उस साल। तो अगस्त में जा कर के हम लोगों ने जितना मध्यम जमीन का धान का खेत था सभी में रीज एंड फारो मेथड से जो है अरहर की खेती किए थे
1: और सफल हुआ
0: और सफल हुआ। और हमारे जो निदेशक अनुसंधान थे वे आए और किसी मंच पे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर सर से जो मीटिंग हो रही थी तो उस मंच पे जो बोला गया कि पूरे झारखंड में तो सूखे की स्थिति है तो उन्होंने कहा कि यदि आपको देखना है सर तो जाके चियांकी जाइए वहाँ सूखा का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि जो धान का खेत है मध्यम जमीन का उसमें भी अरहर की खेती उन लोगों ने अगस्त में किया है और उससे जो है लगभग हम लोग 40 क्विंटल जो है अरहर पैदा कर किए थे उस साल। तो ये बात आपको किसान भाइयों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सचेत रहना पड़ेगा
1: यह महत्वपूर्ण बात है।
0: हाँ चूँकि देखिए बारिश का कोई संभावना ही व्यक्त कर सकते उसमें तो कोई 100% दावा नहीं कर सकता
1: नहीं।
0: तो जैसा प्रेडिक्शन है तो उसमें हमको
1: अगर 15% की बात आपने कही तो हम 30 मान के चलते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी समय पर आप यदि धान का भी बिचड़ा कर रहे हैं तो लो लैंड में आप माइंड मेकअप कीजिए कि उसके लिए तैयार रहिए जब भी बारिश हो आप बिचड़ा कीजिए। लेकिन उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि एक बार में आपको सारा बिछड़ा नहीं गिराना चाहिए।
1: अच्छा
0: उसमें जो है कम से कम 3 लॉट में जो है आपको धान का बिछड़ा गिराना चाहिए क्योंकि मान लीजिए एक बार आप कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समय पर आपको मान लीजिए मजदूर नहीं मिलेंगे क्योंकि धान का जो रोपाई करते हैं आपका जो नर्सरी उखाड़ना है बिछड़ा उखाड़ना है और फिर जाकर रोपाई करनी है उसमें टाइम लग जाता है तो उसमें अच्छा खासा जो है लगभग 12 मजदूर जो है एक एकड़ में लगते हैं तो सोचिए आपका लगभग एक हेक्टेयर में जो है 30 मजदूर लगते हैं। तो धान का खेती इसीलिए थोड़ा महंगा होता है कि उसमें लगभग जो है 60-62 हज़ार प्रति हेक्टेयर जो है खर्च आता है।
1: अच्छा
0: जिसमें कि 24 हज़ार रुपये लगभग जो है मजदूरी लग जाता है।
1: वाह
0: तो लगभग

0: आधा किसान भाई कह सकते हैं कि उसमें पैसा जो है मजदूरी में चला जाता है। और समय पर यदि आपको मजदूर नहीं मिलेंगे तो समय पर आपका रोपा भी नहीं होगा,
1: नहीं होगा।
0: बिचड़ा जो है बूढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग कि 3 बार कम से कम उसको, 3 बार में मतलब गिराना चाहिए, एक बार नहीं, एक एक सप्ताह का बीज करके गिराना चाहिए। हम लोग भी क्षेत्रीय अनुसंधान के चियाकी में कम से कम 3 बार में ही उसको
1: तो
0: गिराते
1: तीन बार
0: हैं,
1: कितने कितने अंतराल पर,
0: एक एक सप्ताह के
1: एक एक
0: अंतराल।
1: सप्ताह में?
0: जी
1: उस स्थिति में अगर बारिश भी हुई तो भी देख लिया
0: जी
1: जाएगा,
0: जी
1: तो
0: उसमें
1: कोई
0: है
1: ना कोई तो जो तीन तीन बार में जो हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो
0: हाँ,
1: मेरा सफल
0: मेरा
1: हो जाएगा।
0: सफल हो जाएगा।
1: जी
0: और दूसरी चीज़ जो अरहर और तिल की जो बात कर रहे थे, तो देखिए अभी भविष्य में और इसका जो है ज़्यादा जो है प्रति किलो जो है कीमत मिलने वाला है।
1: बिल्कुल
0: अब एक जो हम लोग के यहाँ प्रोजेक्ट चला है
1: हाँ
0: उसमें किसान भाइयों को ले करके उनके ही खेत में करना है, पल सीड हब जो हमारे यहाँ परियोजना है, तो
1: जी
0: अरहर की खेती के लिए है कि उसमें प्रति क्विंटल जो है 300 रुपये लगभग उनको बेनिफिट मिलेगा। एक तरह से अलग जो सीड का दाम है
1: अच्छा
0: वो बेचेंगे, उसके अलावा
1: अच्छा
0: प्रोत्साहन राशि जिसको बोलते हैं
1: अच्छा
0: उस रूप में जो है उनको जो है 300 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है।
1: जी हाँ, किसान भाई बहन, आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। अरहर एवं तिल से संबंधित और विशेषज्ञ थे डॉक्टर अखिलेश शाह। और इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम ग्रामीण सभा से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, क्षमा करेंगे, ग्रामीण सभा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
3: और ये
2: मेरी गुड़िया थी ना।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्य में एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए अब मात्र 2 दिन का समय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बचे हुए मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने का किया आग्रह। भाजपा ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले में शामिल अधिकारियों को बचाने का लगाया आरोप। घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर राज्यभर की इकाइयों में हुए कार्यक्रम। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक

0: सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत वोटरों के पास इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए अब मात्र 2 दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 94.96% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। राज्य के 99.90% मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। श्री कुमार ने बाकी बचे मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया है। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चास प्रखंड में 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और जरडी क्षेत्र में 99.84%, बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र में 85.63% तथा चास नगर निगम क्षेत्र में 84.96% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर जांच प्रभावित करने और वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मामले के निष्पक्ष तथा CBI से जांच कराने की मांग की है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
2: कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है, किसको गिरफ्तारी कर रही है? साफ सिपाहियों को, अरे दोष है उनका, उनको भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन जो DSP SP जो मुख्यमंत्री के होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और जो सीधे तौर पर ट्रेजरी अफसर है, उनको उन्होंने नहीं हटाया और जांच में सहयोग उन्हीं से ले रहे हैं, यही ट्रेजरी अफसर।
1: झारखंड में कुल 60 लाख रुपए के इनामी 16 माओवादी कल आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी और 10-10 लाख रुपए के इनामी 3 जोनल कमांडर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार चल रहे माओवादी विरोधी अभियान और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। राज्य के परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना के लिए कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित होगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आज रांची शहरी क्षेत्र के 7 वार्डों में व्यापक डेंगू सर्विलांस अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों की जानकारी जुटाई, संभावित डेंगू मरीजों की पहचान की तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच की। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 21, 22 और 23 में अभियान के दौरान 76 घरों तथा 680 पानी वाले बर्तनों की जांच की गई। इनमें 16 घरों और 25 बर्तनों में डेंगू के लार्वा पाए गए। वहीं वार्ड संख्या 5, 16, 27 और 28 में 90 घरों तथा 566 पानी वाले बर्तनों की जांच की गई, जिनमें 13 घरों और 13 बर्तनों में लार्वा पाए गए। उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त विजय गुप्ता ने गिरिडीह में राजस्व संग्रहण समेत कई मामलों की

0: समीक्षा की। उन्होंने संगठित आर्थिक अपराध और बालू तस्करी पर सख्त कार्रवाई, म्यूटेशन में तेजी तथा वन अपराध रोकने के निर्देश दिए।
1: भूमि सुधार से संबंधित म्यूटेशन, अतिक्रमण, जमाबंदी कैंसिलेशन, जीएमएफटी फंड, अवैध खनन, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा जो सघन अभियान, उत्पाद निबंधन आदि मामलों में यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से मैंने समीक्षा की।
0: पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 88वां स्थापना दिवस आज झारखंड में विभिन्न इकाइयों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। खूंटी स्थित 94वीं बटालियन और चाईबासा की 174वीं वाहिनी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा जवानों को राष्ट्र सेवा, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवाद निरोधक कार्रवाई और आपदा राहत में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद हुई बारिश से पिछले दो दिनों से जारी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, खूंटी समेत आसपास के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कोल्हान क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है। टूर्नामेंट का दूसरा मैच 29 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच खेला जाएगा। इसके लिए मुफ्त टिकटों का वितरण आज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्य में एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए अब मात्र 2 दिन का समय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बचे हुए मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने का किया आग्रह। भाजपा ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले में शामिल अधिकारियों को बचाने का लगाया आरोप। घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर राज्य भर की इकाइयों में हुए कार्यक्रम। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में SIR का काम लगातार जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जिले में 17,085 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है। उपायुक्त ने सभी शेष मतदाताओं से आग्रह किया है कि इस कार्य को अत्यंत आवश्यक समझते हुए बिना विलम्ब अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित BLO के पास जमा करें ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। DC ने कहा कि 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। लोहरदगा जिला में अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति की हत्या करने आए दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDPO श्रद्धा क्रिकेटा ने बताया कि
2: ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को गुप्त सूचना मिला SP सर को, जिसके आलोक में टीम गठन किया गया। उसमें थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर और थाना के अन्य लोगों के साथ मिलकर के ये टीम जाकर के एक एल्ट्रो गाड़ी है उसको पकड़ी है जुड़िया के आसपास, और इसमें तीन लोग थे और हथियार के साथ बरामद हुआ, जिसमें एक भाग दो लोगों की अरेस्टिंग हुई है और अवैध हथियार साथ में प्राप्त हुआ है।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिला का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वे अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रही हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि
3: पिछलार प्रखंड में गई थी और विशेष रूप से यहां देखेंगे तो हिंडालको से संबंधित जमीन अधिग्रहण और अपने नाम से खतियान ले लिया गया है, ये बहुत बड़ा मामला है। साथ ही साथ यहां लोगों का जो पंजी 2 में जमीन चढ़ा है वो 00 हो गया है, उनको संशोधन करना है। कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, कई लोगों का पेंशन से संबंधित मामले हैं, आवास से संबंधित मामले हैं, ऐसे ही कई विधवा पेंशन से संबंधित मामले हैं, ऐसे छोटे बड़े लगा करके बहुत सारे मामले हैं जो आज आयोग के संज्ञान में आया है।
1: लोहरदगा जिला में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों में जनता दरबार लगाया जा रहा है। इस मौके पर जिले के SP सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर रहे हैं। लोहरदगा के SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: जब से मैं यहाँ लोहरदगा में आया हूँ, बहुत से मामले जो मुख्यालय में भी मेरे पास आते हैं, उसमें बहुत सा छोटे मोटे विवाद के कारण भी लोग आते हैं। इसमें एक बड़ी जो बाधक है वो जमीन विवाद से संबंधित है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, उसी में एक दूसरे पर नीति प्राथमिकी के लिए भी आवेदन देते हैं। उसी उन सब को दूर करते हुए और भी जो इनके यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है, कानून से संबंधित, खाना से संबंधित या किसी प्राथमिकी से संबंधित, उसकी जानकारी लेने के लिए आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है।
1: लोहरदगा जिला में बरसात के मौसम में सर्प दंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एक महीने में लगभग 45 लोगों को सांप ने काटा है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। जिले में वर्षा के बाद अब किसान खेतों की ओर चल पड़े हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। लोहरदगा जिला में धान रोपनी का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ आसानी से, प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई, तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं। नंबर नोट करें, 1800 121 0051, 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। इस कार्यक्रम में लगातार हम आप सबों को कोर्सेज के बारे में बताते हैं, ज्यादातर बुलाते हैं अपने विशेषज्ञों को, जानकारियां दिलवाते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में अवनीश रंजन थे, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया, दोनों में अंतर करके, कि प्लेन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या अंतर है, कहाँ कौन आगे और कहाँ कौन थोड़ा पीछे है। ढेर सारी जानकारियां हम आपको दिलवाते हैं। जैसे इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन लोगों ने पढ़ाई की है, उनके लिए 3 नए कोर्सेज आए थे, जिसकी भी चर्चा हमने आपसे की थी। पहला था बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा था फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और तीसरा था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में आप पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद रोजगार मिलना, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पढ़ने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। यूनिवर्सिटी ने या जहां से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसने क्या व्यवस्था की है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी इसकी क्या व्यवस्था है, हमने जांच पड़ताल की आपके लिए, और हमने पाया कि बजाबता एक पूरा यूनिट है आपके प्लेसमेंट को लेकर, जो आपको तैयारी करवाता है कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जाए, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे जॉब असिस्टेंस दिया जाए, ये सारी चीजें। और उस विभाग को जो देखते हैं ना, जो इंचार्ज हैं, आज हमारे साथ हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय।
1: हम अरिंदम मुखर्जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड, इंचार्ज फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी।
0: अरिंदम जी, बुनियाद कार्यक्रम में आ गए हैं और करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से जुड़ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्या कुछ होता है बुनियाद कार्यक्रम में, हम जानकारियां देते हैं। आप हमें ये बताइए कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग जो है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी छात्र के लिए और प्लेसमेंट के लिए।
1: देखिए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि स्टूडेंट लोग हायर एजुकेशन में आता है फॉर गेटिंग फॉर एक करियर बनाने के लिए, और ये करियर बनाने के लिए जगोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को डेवलप करने के लिए हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है ये इंडस्ट्री रेडी है और इंडस्ट्री रेलिवेंट है, और हम लोग स्पेशली स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है टू गेट अ जॉब। हाँ, ये जो कंपनी यहाँ पे आता है ये कंपनी जैसा डोमेन नॉलेज में स्टूडेंट लोग का इवेलुएट करता है, और ये देखता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता है क्या नहीं, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टूडेंट को डालता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग पहले साल से ही स्टूडेंट लोग को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब उसका प्लेसमेंट सीजन आएगा वो कंपनी में बैठ के सक्सेसफुल होके हाथ में जॉब लेके उसका कोर्स खत्म करेगा। और हम लोग दूसरा चीज जो है, हम लोग प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है 6 महीना और 8 महीना पहले, कोर्स का खत्म होने का 6 और 8 महीना का पहले।
0: इसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या होता है, कौन लोग होते हैं, ये सारा कुछ बताइए जरा हमारे बिहार और झारखंड के सुनने वालों को।
1: हम लोग का यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनर है जो जिसका रेगुलर बेसिस में क्लास मिलता है, वो क्लास में जाता है और स्टूडेंट लोग को रेडी करता है प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए। दूसरा चीज जो है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हायर करता है आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और रेगुलर बेसिस में और एवरी मंथ वो कैंपस में आता है और हर डिपार्टमेंट को लेके वो बैठता है ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें उसका पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग होता है, एक्सटेम्पो ट्रेनिंग होता है, रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है, रीजनिंग का ट्रेनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज का ट्रेनिंग होता है। हाँ, ये सब ट्रेनिंग हम लोग पहले से स्टार्ट कर देता है, और ये आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के साथ एडिशनल ट्रेनिंग हम लोग देता है, कि जब स्टूडेंट लोग प्लेसमेंट सीजन आएगा स्टूडेंट लोग रेडी रहेगा और ये आपका उसका हाथ में एक नौकरी लग जाएगा।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ हैं अरिंदम मुखर्जी जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग के हेड हैं। इन्हीं की देखरेख में बच्चों को ट्रेन किया जाता है जब कंपनीज आती है पढ़ाई के बाद, और जब नौकरी की बारी आती है तो एकदम पुख्ता ट्रेनिंग देके बच्चों को इंटरव्यू देने लायक बनाया जाता है, नौकरी पाने लायक बनाया जाता है। और नौकरी बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के बाद तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। बहरहाल ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से, जो कि सासाराम रोहतास जमुआर में है, और एक टोल फ्री नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए 1800 121 0051 1800 121 0051, और एक मोबाइल नंबर है जो सिर्फ आप युवाओं के लिए ही लिया गया है कि आप इस पर जानकारियां ले सकें, और वो नंबर है 9431899002 9431899002, ये नंबर है, इस पर आप अधिक से अधिक जानकारियां ले सकते हैं। और राजेश फिर कहता है आप लोगों से, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, और अब तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे की भी कोई समस्या नहीं रही। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और 13-14 ऑप्शन है टेक्निकल पढ़ाई का, यहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल मुखर्जी साहब एक बात बताइए, कहते हैं कि जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी, हाँ जो हिंदी में बोलता है, हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता है, उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज कम है, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है अभी बताइए।
1: देखिए, हमारा का हिंदी है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, हाँ आपका पूरा भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी है और इसका भी बहुत सारा डिमांड है। आप कोई भी आपका जो डेवलप्ड सिटी है, टाउन में है, सब जगह में जहाँ जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है, ऑफिस है वर्क लोकेशन में, वहाँ पे हिंदी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और एक्सेप्टेबल है। और क्या है कि आप हिंदी इंग्लिश मिलके भी आप कोई भी चीज एक्सप्रेस कर पाता है तो आप आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और हिंदी जो भी है आपको अच्छा तरीके से एक्सप्रेस करने पड़ेगा, हिंदी में हो और अंग्रेजी में हो, वो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा, वो चीज सही होने से आपको जॉब मिल जाएगा।
0: हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने सचमुच बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात बताइए, क्या 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए आप गारंटी देते हैं, असिस्टेंस देते हैं? क्योंकि चीजें साफ साफ होनी चाहिए, एकदम खुल के, कोई छिपा के, लाग लपेट के साथ नहीं। बताइए क्या है मुखर्जी जी आपके यहाँ GNSU में?
1: आपको देखिए, इंडिया में और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी नहीं देता है। ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, हम लोग का काम है स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट को रेडी करना, उसको नॉलेज देना। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज है, हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है और हम लोग का बिलीफ है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा।
0: वाह, बहुत खूब, आपने जो बातें थी आपने सच सच बता दी कि 100% हम असिस्टेंस देते हैं, गारंटी की बात नहीं है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, कोई सजेशन देना चाहिएगा स्टूडेंट्स को, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं?
1: हमारा तो एक ही सजेशन है, एडवाइस है, जो भी बोलिए, स्टूडेंट लोग को बोलिए कि आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और नॉलेज और स्किल उसको एक्वायर करना बोलिए, नहीं तो उसको तुरंत जॉब नहीं मिलेगा। उसको स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसका उसके लिए वो आपका क्या है कि ऑब्सोलेट हो जाएगा इंडस्ट्री में। और इसीलिए एक टेक्निकल नॉलेज का बहुत ही जरूरी है।
0: बहुत सही कहा अरिंदम मुखर्जी साहब आपने स्टूडेंट से कि टेक्निकल होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और राजेश भी कहता है कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए टेक्निकल में आ जाइए और नौकरी मिल जाएगी, इसकी आप आशा कर सकते हैं अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की। मुखर्जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरत होगा तो हम फिर आपको बुलाएंगे बुनियाद कार्यक्रम में। पूरा बिहार और झारखंड आज जो आपसे बात हुई ये सुनकर लाभ उठाएगा युवा साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, चलने का वक्त धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा है, पैसा नहीं है, क्या हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वैसे कोर्स को चुनिए जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। टेक्निकल पढ़ाई करनी है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 13-14 टेक्निकल पढ़ाई, मेडिकल से शुरू करके पैरामेडिकल से एग्रीकल्चर, बहुत सारे हैं, आप पता कर लीजिए इन नंबरों पर 9431899002 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001, इस नंबर पर पता कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने ये बुनियाद कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। चलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं चंद गजलें, कलाकार हैं गुलाम अली।

0: श्रोता में भी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गई हुई चंद गजलें एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं कल्याणी कार्यक्रम में डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता। विषय है खट्टी डकार भी बीमारी का कारण। बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों जब हम भोजन करते हैं तो डकार भी लेते हैं और जब खट्टी डकार आती है तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बीमारियों का संकेत दे रहा हो। जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि खाना हमें पेट तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या कारण है और जब डकारें आ रही हैं जो आपका भोजन है ऐसा लगता है कि वो मुँह तक आ रहा है तो इसका कारण क्या है, उपचार कैसे करें, सावधानियाँ अपने जीवन में किन किन बातों का रखें और इसका लक्षण क्या है कि कौन सी बीमारियों को ये बताने जा रहा है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं लैप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रोसर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार झा। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आना किस बात का संकेत देता है?
2: आज के दिन में अक्सर हम मरीज हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अनपथ सा लगता है, खाना जैसे लगता है कि वापस मुंह में आ रहा है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होता है, सीने में दर्द होता है। इसे साइंटिफिक टर्म में GERD GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे मुंह के बाद एक नली के रास्ते हमारे स्टमक में जाती है। इस नली को हम इसोफेगस कहते हैं और स्टमक में पहुंचने के बाद वो खाने छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। उसके बाद वो खाना छोटी नली में जाता है, तत्पश्चात वो हमारी बनी आंत में जाता है और आंत के रास्ते बाद वो मल के रास्ते बाहर आता है। जब खाना हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद आगे ना जाकर वापस हमारे खाने के नली यानी कि ऊपर वाले नली में आए जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, ऐसे कंडीशन को GERD कहा जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। जब ये खाना जो हमारे इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहां का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि स्टमक का प्रेशर बढ़ा रहता है और खाना ऊपर आ जाता है। जैसे कि आज की ज़िंदगी में लोगों को स्मोकिंग की आदत, शराब पीने की आदत, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है, ये सब चीज़ें हमारे स्फिंक्टर वाल्व को कमज़ोर करती हैं जिसके कारण होता है कि कभी भी हमारा प्रेशर अगर पेट के अंदर बढ़ता है तो वो खाना आगे न जाकर वापस इसोफेगस में आ जाता है, तब GERD की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कारण होता है कि स्टमक जो है वो वहाँ एसिड बनता है, मेनली वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमारे फूड के जो भी हम खाना भोजन खाते हैं उसको पचाने में काफ़ी सहायक होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शराब पीने से, सिगरेट का सेवन करने से। कई बार लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं शरीर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तुरंत वो दवा खाते हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें एसिड का ज़्यादा बनना होता है। जैसे कि एक रेयर बीमारी है जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम या गैस्ट्रिनोमा, ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें एसिड का प्रोडक्शन या बनना ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ होती है कि जो पेट का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओबेसिटी मोटापे के कारण, प्रेगनेंसी के कारण, या हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं भी हम पार्टी में गए या कहीं भी किसी फंक्शन में गए तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया।

0: वैसे कंडीशन में पेट का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और वो खाना वापस इसोफेगस में आने लगता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि खाना आगे नहीं जाता है, पेट में वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि आम जिंदगी में कहें हम डायबिटीज़, डायबिटीज़ पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो स्टमक का मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं, जिसमें कि खाना आगे ना जाता है, खाना स्टमक में ही जमा रहता है। ऐसे करने से स्टमक का प्रेशर बढ़ता है और वो खाना वापस हमारे इसोफेगस में आ जाता है। एक कंडीशन होता है हर्निया, हाइटस हर्निया कहते हैं, जो खाने की नली होती है वो हमारे सीने के बीच से होते हुए एक परत होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे सीने को और पेट को अलग करती है। तो इसोफेगस उस वहाँ से एक छोटी से छिद्र से स्टमक में आता है। कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें वो छिद्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में हमारा स्टमक का हिस्सा खींच के ऊपर चला जाता है और उसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, पेट का जो भी कंटेंट होता है, फूड पार्टिकल्स, वो इसोफेगस में आ जाता है और हार्ट बर्न की शिकायत होती है, खाना बार बार मुंह में आता है।
1: तो ये जब बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं, हम सावधान हो जाएं और उपचार शुरू कर दें?
0: सही कहा आपने, मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो मरीज ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमारे सीने में काफ़ी जलन, हमेशा जलन जैसा रहता है। कहेंगे कि खाना खा लिया, जैसे लेटने जाते हैं लगता है खाना वापस मुँह में आ गया। ये स्पेशली खाना खाने के बाद या लेटते वक्त उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि सीने में दर्द होना, कहेंगे वो बताएंगे कि सीने के बीच में दर्द होता है। कई बार ये लक्षण हार्ट की जो बीमारी होती है, हृदयाघात का भी होता है, कई बार होता है कि वो बोलेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना निगलने में उन्हें काफ़ी दर्द होता है या तकलीफ़ होती है। कई बार उन्हें बिना दर्द के ही खाना जाता है लेकिन तकलीफ़ होती है और कई बार उसके साथ साथ दर्द भी होता है। इसे हम डिसफेजिया या ऑर्डिनोफेजिया कहते हैं। अगर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं तो पेट का, जैसा मैंने कहा कि वो एसिड बनता है स्टमक में, वो बार बार अगर इसोफेगस में आए तो वो अल्सर बना देता है। अल्सर के कारण खून का प्रसाव होता है और मरीज कई दिनों बाद ये कह के आते हैं कि सर हमें बहुत हमेशा कमजोरी लगती है, हमारे शरीर में जान नहीं लगता, हम ज़्यादा चल भी नहीं सकते, हमेशा तकलीफ़ रहती है। और आगे चल के 10 साल 15 साल बाद अगर लोग अब इसका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये कैंसर का भी रूप ले सकता है।
1: जी, कैसे इसका उपचार किया जाता है, कौन कौन से जाँचें की जाती है और मरीज कितना प्रतिशत ठीक हो जाता है? क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसे बहुत सारी सावधानियां अपने जीवन में रखनी?
0: नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। जांच मुख्यतः जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एंडोस्कोपी, ये रूटीन प्रोसेस है, इसमें हम एक दूरबीन का रास्ते पाचन क्रिया को हम देखते हैं, पाचन के लिए ये इसोफेगस होता है उसे देखा जाता है। ये डे केयर प्रोसेस है, आप जाके दो घंटे में सारा जाँच करा के आ सकते हैं। बार बार अगर मरीज ये कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ये स्टमक का जो एसिड है वो कितनी मरतबा आता है आपके इसोफेगस में। इसके लिए हम 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितनी देर तक वो एक्सपोज होता है, इसको हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं पीएच से। हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच है वो होता है 3 to 5, 3 से 5 के बीच में होता है, और हमारे इसोफेगस का जो पीएच होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। जब बार बार गैस्ट्रिक जूस हमारे इसोफेगस में आता है तो इसको हम पीएच मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसमें पीएच कितना चेंज हो रहा है, और ये पीएच आमतौर 2 से 4 के बीच में पाया जाता है इस बीमारी में। तो इससे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मरीज़ को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका इलाज कैसे कैसे हो सकता है और आपके लिए बेहतर इलाज क्या है। अगर मरीज़ को लक्षण बहुत कम है, प्रायः ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है मरीज़ की डाइट लाइफस्टाइल से पर निर्भर करता है। आज के समय में लोग अक्सर लोग स्मोकिंग, शराब का सेवन करना, कहीं पर भी खाने पे कंट्रोल नहीं होना, मसाला ज़्यादा यूज करना, ये सब करते हैं। तो हम मरीज़ को पहले समझाते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, आपको इन चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंपल एंटासिड्स या दवा होती है गैस की वो देते हैं और उनको 15 दिन पे हम बुलाते हैं देखने के लिए कि ये सब चेंज करने के बाद उनमें कितना बदलाव आया है। जो मरीज शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। फिर इस बात का देखना पड़ता है कि मरीज़ जैसे कि मोटापे से ग्रसित है या और कोई बीमारी उनको है, जो डायबिटीज़ है, कब्जियत की शिकायत है, तो हम उनको इनके साथ साथ जो एसोसिएटेड बीमारी है उसको भी ठीक करने

0: की का परामर्श देते हैं कि सिर्फ दवा खाने से ये नहीं होगा, जिस जो रूट कॉज है इसका, जो बीमारी का कारण है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये होती है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मरीज़ों में होती है, जैसा कि मैंने कहा कि हायटल हर्निया किसी को अगर होता है, ऐसे मरीजों को ही हम सर्जरी का सुझाव देते हैं, नहीं तो मरीज जो है सो दवा से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को जो बदलती जीवन शैली है, जो बिगड़ता खान पान है और खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे खान पान में किन किन चीज़ों का समावेश करें और संतुलित भोजन का सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें और इस तरह की बीमारियां हैं आप तक
0: हाँ,
1: नहीं पहुँचे।
0: बीमारी को समझने के लिए या तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है, या बीमारी को ठीक होने के लिए भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज उसके रूट कॉज में ही है। अगर हम उस कारण को दूर करते हैं तो हम बीमारी को भी अपने से दूर कर रहे हैं। आज के समय में आपका लाइफस्टाइल, खान पान का शैली, इसे अगर आप सुधारते हैं, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना, और एक बार में खूब नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं, जिस हिसाब से आप खाते हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आप व्यायाम करें, इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आप बेहतर हो सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, संतुलित आहार जब आप खाएंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश कुमार झा, लेप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रो सर्जन, आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल एक फिर नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो।
2: कल्याणी कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ली गई भेंट वार्ता, विषय था खट्टी डकार बीमारी का कारण। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए सुनिए पलक मुसल और यशराज कपिल की आवाज़ों में पुलिसगिरी फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे चंद फिल्म के गाने। फिल्म थी प्रेम ग्रंथ, पुलिसगिरी, लुटेरा, कृष्णा कॉटेज, दो रास्ते, कटी पतंग और

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार संध्या, न्यूज 8 और उर्दू में खबरें।
1: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
3: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
4: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा, टाइम अलॉटेड है।

0: बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए

0: जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय

0: पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीति मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की तहकीकत के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की भी हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दौलत मुश्तरका गेम्स में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दो नौजवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पर जोर दिया कि वो बिल पर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे वक्फ किए गए हैं और 91 तरमीमात मौसूल हुई हैं।
1: अध्यक्ष मोदी जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट के नोटिस भी आए। इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें।
0: चूंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए प्रिसाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 एक अहम कानून है जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल, जफाकशी और उम्मीदों से वाबस्ता है।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध

0: कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
1: इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो उमूर दाखिला के वजीर मुमलकत ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम का तरमीम बिल 2026 पे बहस के लिए पेश किया। इस बिल का मकसद कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम के कानून 1971 में मजीद तरमीम करना है। मुजवजा कानून वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन जैसा ही कानूनी तहफ़ फराहम करना चाहता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मानसून इजलास के दूसरे हफ्ते के पहले रोज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई क्योंकि अपोजिशन के अराकीन नीट मामले पर एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों के खिलाफ दर्ज की गई FIRs को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई 4 बार मुलतवी की गई जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 5 बार मुलतवी की गई। अपोजिशन के शोर शराबे के माबैन अवामी इम्तहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए पेश किया गया है। इस कानून का मकसद एक जाम कानूनी लाहे अमल कायम करने के साथ साथ तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़ फराहम करके इम्तहान के निज़ाम में शफाफियत, ईमानदारी और इसके वक़ार को मुस्तहकम करना है। इसमें बहुत सी अहम शिकें हैं जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की इमलाक को जब्त करने समेत सख्त गुंजाइशें शामिल हैं। चेयर और हुकूमत की बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन दोनों ऐवानों में शोर शराबा करते रहे। चूंकि शोर शराबा और मुखालफत का सिलसिला जारी रहा इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल यानी मंगल के रोज दोबारा शुरू होगी। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में मौसूल होने वाले अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस की सरबराही में एक 4 रुकनी खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई है। इस टीम में DIG ओहदे के एक अफसर, एक पुलिस सीनियर सुपरिंटेंडेंट और एक एडिशनल SP शामिल होंगे। अदालत आलिया ने रियासती सरकार से कहा है कि वो SIT के 5वें रुकन के तौर पर फॉरेंसिक एक ऑडिटर को भी शामिल करे जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत की बेंच उन बहुत सी उजरदारियों पर समाप्त कर रही थी जिनमें मंदिर ट्रस्ट के अतियात की चोरी और ऑडिट के इल्जाम के मामले में CBI के जरिए जाँच की दरखास्त की गई है। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश में खसूसी अदालत ने राम मंदिर अतियात की चोरी के मुबैना मामले में तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद आज भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेग्जेंडर पोलिशकुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। इस वाक़े पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने सख्त अल्फाज में तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की मजम्मत की है। वजारत ने बहरी जहाज रानी के तहफ्फुज, जहाज रानी की आज़ादी और बैनुल अक्वामी तजारत पर इन हमलों के मनफी असरात को उजागर किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सफीर से दरख्वास्त की गई है कि वह यूक्रेन के हुकाम को तजारती जहाजों को निशाना बनाने पर भारत की शदीद तशवीश से आगाह करें। वजारत ने यादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जहाजरानों की जिंदगियां खतरों में पड़ जाती हैं। इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और इनसे बचना चाहिए। सऊदी अरब ने आज कहा कि उसने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से दागे गए ड्रोन मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वजारत दिफा का बयान आज ऐसे वक्त पोस्ट किया गया जब अमरीका और ईरान ने हफ्तों की कशीदगी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इन ड्रोन में मशरकी सऊदी अरब और राजधानी रियाज में पेट्रोलियम मराकज को निशाना बनाया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने चीन के अपने दौरे का आगाज आज CPC बैनुल अक्वामी महकमे के नायब वजीर सन हयान के हमरा मीटिंग के साथ किया। उन्होंने लीडर सतह की रहनुमाई, तरजीही मामलात और वसीतर सियासी, अवाम से अवाम, तालीमी और थिंक टैंक तबादलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही।

0: भारत और चीन के दरमियान नाथुला पास के जरिए सरहदी तिजारत अगले महीने की पहली तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगी। ये तिजारत कोविड-19 वबा के बाद साल 2020 से मुअत्तल थी। तिजारत दोबारा शुरू होने की तकरीब में तवक्को है कि दोनों मुल्कों के हुक्काम शिरकत करेंगे। तवक्को है कि तिजारत के दोबारा शुरू होने से सरहद पार की तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे इंदिराज शुदा ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और मुंसलिक कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। ओडिशा शदीद मानसून से दोचार है, क्योंकि बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा के कई जिलों से ताज़ा सैलाब, पानी भर जाने, फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर है। रियासती हुकूमत ने तैयारी और आफात से निमटने के इकदाम को मुस्तहकम करते हुए जिला इंतजामिया को सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ताज़ा सैलाब आ रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ ज़िले शदीद तौर पर मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के मयूरभंज, क्योंझार, बालासोर, भद्रक, जयपुर, देवगढ़, अंजुल, ढेनकनाल, सुबर्णापुर, बौद्ध, नौपारा और बलांगीर में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भद्रक जिले की 7 ग्राम पंचायतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सुबर्णापुर जिले से फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। रियासत के महसूल और कुदरती आफात से निमटने के वजीर सुरेश पुजारी ने आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए सभी जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट के दौरान 24 घंटे चौकसी बरतने और राहत और बचाव के फौरी इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उड़ीसा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और विदर्भ में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने की पेशगोई की है। उत्तराखंड हुकूमत ने अपने सभी जिलों की इंतजामिया को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड हुकूमत ने चारधाम यात्रियों, सयाहों और रिहायशियों को सफर से पहले मौसम से मुतालिक अपडेट हासिल करने का मशवरा दिया है। इधर आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी की सतह कम हुई है। फिलहाल आसाम में 37,000 से ज्यादा अफराद अब भी 109 राहत कैंपों में कयाम पजीर हैं। ओडिशा के पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा की सालाना इख्तितामी रस्म नीलाद्री बीजे आज मनाई जा रही है। ये पवित्र तकरीब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर के गर्भगृह में वाके रत्न सिंहासन पर रस्मी वापसी की अलामत है। पुरी में लाखों अकीदतमंद इस अजीमोशान वापसी के शाहिद बनने के लिए जमा हुए हैं, जो रथ यात्रा तकरीबात का अजीमोशान इख्तिताम है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये रस्म बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर लोगों से मिलजुल कर फातिहाना तौर पर अपनी अवधि पनाहगाह में वापस लौट आए हैं। भगवान जगन्नाथ का देवी लक्ष्मी को मुकद्दस रसगुल्ला पेश करना इस तकरीब का सबसे अहम लम्हा होता है। रसगुल्ला पेश करना खुशनूती और सुलह आश्ती की अलामत है। इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे खोल देती हैं, जो माफ़ी, हम आहंगी की बहाली और मोहब्बत की फतेह की अलामत है। नीलादरी बीजे के साथ रथ यात्रा का ये मुकद्दस सफर अपनी मजहबी तकमील को पहुंचता है। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस अर्जदाश्त पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में इन रहनुमाओं के खिलाफ दायर करदा ईडी की फर्द जुर्म पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने जवाब दहिंदा की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद मामले की अगली समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। असातेजा की अहलियत से मुतालिक महाराष्ट्र के इम्तिहान के पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम ने आज भिवंडी की एक अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही इस मामले में मुलजिमीन की तादाद 15 हो गई है। इम्तिहान में हुई बेजाब्तगियों की पुलिस जांच कर रही है। भारत की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ग्लासगो में मुनक्किदा दौलत मुश्तरका खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाली ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ उनका मजमुई वजन 199 किलोग्राम रहा। नाइजीरिया की ओनोम डीडी ने कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड के साथ 206 किलोग्राम का वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। जीत के बाद भारत की तमगों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनाक्दा दौलत मुश्तरक खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए आईजीपी की क्यादत में एक 4 रुकनी एसआईटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया है और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो हाथ में।
2: अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
1: क्या समझ कर आए थे,

0: ये सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
1: अमजद खान, आज के फनकार।

0: अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है? कहां है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है बता? अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? आओ आओ अब आयो हाथ में। आओ आओ शाबाश।
0: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी, इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो, पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल

0: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
1: कौन? कौन?
2: डर गए क्या? कसम भैरों की मैं कोई भाग या भालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
2: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ पे कोई काम नहीं
2: है। है, काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: कहा था आपको लाने के लिए, मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
3: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा,
3: क्या हुआ?
1: देखो ना, देखो।
3: काली बाबू, आप
2: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
4: शाहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए ये सब।
2: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
4: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
1: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
2: बस बस, बहुत हो गया। बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना।
4: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
2: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरों की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
0: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं। जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
2: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
5: घर में है?
2: मैं
5: आदाब सर, विष्णु साहब
2: आइए, आइए सेठ जी आइए।
6: नमस्ते सेठ जी।
2: नमस्कार। दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
7: इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
6: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
2: ऐसे नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहां आपको यह बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया। हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या क्या है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना। हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे।

यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: फिल्म।
1: याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रूदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो
2: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है ताजमहल।

नमस्कार, मैं हुसैन जैसिन्ना और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ताजमहल फिल्म का गीत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म है दोस्ती।

दोस्ती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं लता जी की आवाज़, फिल्म है खानदान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम, मैं रजनीकांता। फिल्मी गीतों के इस सफर में मैं आपके साथ संजय सिन्हा। सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म है सूरज।

सूरज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलन फिल्म का गीत, गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर।

0: नमस्कार, मैं हूँ संजय सिन्ह और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा।
1: करे शोर
2: पवन करे शोर,
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मिलन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ फिल्म है शिकार।

शिकार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीकंदा और मैं हूं संजय सिन्हा। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म है ब्रह्मचारी।

ब्रह्मचारी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आराधना फिल्म का गाना, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

आराधना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम जीने की राह।

जीने की राह। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए सुनिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुकेश की आवाज़ में पहचान फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

पहचान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। लीजिए सुनिए मन्ना डे का गाया हुआ गीत, फिल्म है मेरा नाम जोकर।

में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, हप हप, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, हप हप, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा समाप्त होता है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन